आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: बजे है समाचार आपसे अभी नमस्कार।
2: नमस्कार निलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपये मिलेंगे, जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपये होंगी। जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपये और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपये मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपये प्राप्त होंगे। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया।

0: या वे 1 से 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस के इस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब वर्ष 2026 की पीसाक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा होगी। सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एशियाई भाषाएं अरबी खेल मोरिसियन और खेल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी। मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स की परीक्षा के साथ अंत में यह प्रक्रिया संपन्न होंगी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को यानी कि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है। IRGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और अंत में मौसम का हाल।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. मज़ीद सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की. परवरदिगार आलम से दुआ है कि वह हमें इन आयतों के सुनने का अजर सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे. आमीन सुम्मा आमीन. पेश खिदमत है एक हमद, आइए समाअत करते हैं.

और माल की ज्यादती कब नियमत है। हज़रत इब्न शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदाए ताला के नज़दीक उस मोमिन से अफजल कोई नहीं है जिसने खुदाए ताला की तस्बीह तकबीर और उसकी इबादत तो तहलील के लिए इस्लाम में ज़्यादा उम्र पाई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी बहुत अच्छा है? सरकार अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो और अमल अच्छे हों। फिर अर्ज़ किया कि कौन आदमी बहुत बुरा है? फरमाया, वो शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो और अमल बुरे हों।

हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी ने कहा कि सरकार अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से डरे उसके लिए मालदार होना कोई हर्ज नहीं, और परहेजगार आदमी के लिए जिस्मानी तंदुरुस्ती मालदारी से बेहतर है, और खुश दिली भी खुदा तआला की नियमतों में से एक अजीम नियमत है।

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति। प्रणाम श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल एवं स्वस्थ हैं और भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सब का अभिवादन करते हुए आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओ, हमेशा हम कहते हैं कि भक्ति में हाँ बड़ी शक्ति होती है और भक्ति को संपूर्ण बनाने हेतु हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए और हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। शुद्धता या फिर पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन, विचारों, वाणी और कर्मों की भी होती है। जब हमारा मन पवित्र होता है तब हमारे हर शब्द में मधुरता, हर नजर में प्रेम और हर कर्म में सेवा का भाव दिखाई देता है। पवित्रता वो ही दिव्य ज्योति है जो इंसान को भगवान के और करीब ले जाती है।

भगवान ने हमें एक अनमोल जीवन दिया है। ये जीवन तभी सफल बनता है जब हम इसे सच्चाई, दया, विनम्रता और पवित्रता के साथ जीते हैं। जिस हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार और कपट के लिए जगह नहीं होती, उसी हृदय में परमात्मा अपना निवास बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मंदिर जाने से पहले अपने मन को मंदिर बना लो।

ये नहीं श्रोताओं कि हम संसार छोड़ दें। इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी अपने विचारों को ऊंच रखें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं

अपने कर्मों से सबका कल्याण करें। हर सुबह ईश्वर का स्मरण करें, हर शाम उनका धन्यवाद करें और हर पल ये याद रखें कि भगवान हमें देख रहे हैं।

जब हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं ना, तब धीरे धीरे मन की अशांति दूर होने लगती है। क्रोध की जगह शांति, नफरत की जगह प्रेम और चिंता की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है। पवित्र मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है और हर दुख सुख को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। सत्संग, भजन, ध्यान, जप और सेवा पवित्रता को बढ़ाने के सबसे सुंदर साधन है। जब हम राम, कृष्ण, शिव, राधे या किसी भी आराध्य का नाम प्रेम से जपते हैं ना, तब हमारे अंतर की मलिनता धीरे धीरे धुलने लगती है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा पवित्रता का गंगा जल है, जो हृदय को निर्मल और जीवन को मंगलमय बना देता है।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: श्रोताओं, आज हम सब एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को पवित्र विचारों, मधुर वाणी, निष्काम सेवा और भगवान के निरंतर स्मरण से अलोकित करेंगे। किसी के प्रति बैर नहीं रखेंगे, सबको प्रेम और सम्मान देंगे और हर दिन को ईश्वर की अनमोल देन समझकर जिएंगे। याद रखें, पवित्रता से जिया हुआ जीवन ही सच्ची भक्ति है। जहाँ पवित्रता होती है वही शांति होती है, जहाँ शांति होती है वही आनंद होता है, और जहाँ आनंद होता है वही भगवान का भी वास होता है। सो अपने हृदय को इतने पवित्र बना लीजिए कि भगवान को आपके अंदर अपना घर नजर आए। पवित्रता ही भक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है और इसी से जीवन

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से अभी आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस की स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में अगर बात करें तो स्पेक्ट्रा आई सेंटर ने लेजर विजन करेक्शन यानी कि दृष्टि सुधार प्रक्रियाओं के लिए नई पीढ़ी के नए उपकरण का अधिग्रहण करके अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत किया। जर्मन निर्माता ज़ेईस द्वारा विकसित ये तकनीक दुनिया में सबसे तेज तकनीकों में से एक है और माना जा रहा है कि यह अफ्रीका महाद्वीप पर अपनी तरह की एकमात्र तकनीक है। ये नया अधिग्रहण इस केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और मजबूत करता है जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट

0: और अन्य नेत्र शैल चिकित्सा यानी कि ऑफ्टामोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी आयोजित करता है। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक रकम मिलेगी। इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे, जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह रकम 18,210 रुपए होगी। जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए प्राप्त होंगे। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वे पहले से 5 जुलाई तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था। विजेताओं को उनके पुरस्कार गुरुवार 9 जुलाई को रेजुई स्थित पुल ओक्टाविए ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किए गए। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया दौर शुरू किया। अमेरिका ने ईरान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने बेहतरीन कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले किए। उधर पूर्वी सीरिया में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। फरात नदी को पार करते समय 35 से ज्यादा को ले जा रही एक फेरी पुल से टकरा कर डूब गई। इस हादसे में 2 बच्चे की जान चली गई। हादसे के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नदी के किनारे अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। गजियावो रोड होशतिया में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णावती बिकन पैदाशी नाम गोमिसा और जिन्हें सब लोग कृष्णावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री विक्रम बिकन के घर गजियावो रोड गोश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। थ्रेबू नंबर दो वाकवा में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड की श्री आनंद कुमार बिहारी जिन्हें सब लोग आनंद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर थेबू नंबर 2 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। फाकुआ गली क्यूपिप में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री केशवरदत्त श्री किसुन जिन्हें सब लोग अनिल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के साढ़े तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती नालिनी श्री किसुन के घर फौकुआ गली क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You are listening to RM3 Manoranjan Radio.
2: Yeah.
1: your kind

0: Music all day, all night, right here on your one and only station.
1: Yo. Testing. Testing 1 2.
2: Yeah. कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
0: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: बारह बजकर बारह मिनट हुए हैं। आज है संडे 12th of July, रविवार का दिन है 12 जुलाई 2026। तन्हा नहीं छोड़ने वाले आपको दोस्तों। जी हाँ, इस संडे लेजी आफ्टरनून में आपका साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि हम आ जाते हैं हर रविवार को 12 बजे से 3 बजे तक आपका साथ देने के लिए। माइक पर है देविना। जय नमस्कार जी, हेलो, प्रणाम और गुड आफ्टरनून आप सभी को। और सुहाना सफ़र प्रोग्राम MBC RM Free रेडियो मनोरंजन पर हमेशा की तरह, और रविवार की इस प्यारी दोपहर में बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और आई एम श्योर कुछ लोग अभी टेबल पर बैठे हैं या सोफा में बैठे हैं और लंच ले रहे हैं गर्मा गर्म। सो बोन अपेटी आप सभी को। और साथ में ये पुराने सुनहरे सदाबहार गीत, तो फिर ज़िंदगी सचमुच मुस्कुराती है। और आज का यह सफ़र हम उन गीतों को लेकर आए हैं, खूबसूरत यादों को, जब बारिश में भीगना एक खुशी थी, दोस्तों के साथ हंसना एक आदत थी, और रेडियो पर बजने वाले आपके फेवरेट गीत दिल की धड़कन बन जाते थे। तो आइए बीते कल की उन यादों को फिर से जीते हैं। आज हर गीत आपको किसी न किसी खूबसूरत पल तक ज़रूर ले जाएगा। पहली दोस्ती, पहला प्यार, परिवार के साथ बिताए रविवार, या बचपन की मासूम रिश्ते, या फिर ये गाना, फिल्म है गीत।

अभी आपने सुना इतने प्यारे प्यारे गाने, और ये गाने सुनकर आपको किसकी याद आई? बोलिए बोलिए, सोचिए सोचिए। अगर हम कहें जुबली कुमार, जी हाँ, जुबली कुमार ऑफ इंडियन सिनेमा, उनको कहते थे जुबली कुमार क्योंकि उनकी जो फिल्में थी लगातार लगातार वो हिट होते गए। और हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार साहब की। और एक्चुअली आज जो है ना 12 जुलाई बहुत लोगों का बर्थडे है, मगर आज है हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे उस महान कलाकार को, क्योंकि आज ही के दिन वे चल बसे थे, वे दुनिया छोड़ चले थे। अगर बात करें राजेंद्र कुमार साहब की, तो जैसे वो जो फिल्में हैं मदर इंडिया, संगम, मेरे महबूब, गीत, सूरज, और जैसे हमने अभी साजन बिना सुहागन, ये सब इन फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों को बहुत ही पसंद आया। और जो क्या कह सकते हैं उनके बारे में, उनके कार्यालय में जैसे 80 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और उनकी सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक फिल्मों में शामिल हैं घराना, दिलिक मंदिर, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान। और उनकी फिल्मों की जो गाने हैं ना, सुपर डुपर हिट हुए और आज भी लोग पसंद करते हैं। तो 60s के दशक में उनकी फिल्मों की सफलता का यह आलम था कि उन्हें जुबली कुमार की उपाधि दी गई। वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं और एक थे, और आज भी लोग उनको याद करते हैं। और 80s के दशक में उन्होंने फिल्मों के निर्माण में कदम रखा और अपने बेटे कुमार गौरव को कई फिल्मों में लॉन्च किया। और 12 जुलाई 1999 में उनका निधन हो गया, लेकिन वे आज भी हिंदी सिनेमा के सर्वर्णीय युग के इस अमर सितारे के रूप में याद किए जाते हैं। तो बस उनकी याद में एक और गाना हो जाए और इसके बाद हम उनके जो सुपुत्र हैं कुमार गौरव पर पिक्चराइज एक गाना सुनाने वाले हैं आपको। बस झुक गया आसमान, कौन है जो सपनों

0: खाना सफर
1: जा तेरी कसम मूवी का प्यार भरा गाना अमित कुमार साहब की आवाज में, और इस आवाज को सुनकर किस एक्टर की याद आती है, और उस जमाने में इस एक्टर पर पिक्चराइज बहुत से गाने अमित कुमार साहब ने गाए थे। हाँ जी, वो है राजन कुमार साहब के सुपुत्र कुमार गौरव पर पिक्चराइज ये गाना था, मेरे गीतों में तेरी कहानियां हैं। वैसे जब राजेंद्र कुमार साहब की बात हो रही है तो आज श्रद्धांजलि है उस महान कलाकार को, जिन्होंने कई, जैसे कहें कई फिल्मों से अपने जो लिसनर्स हैं, अपने जो सिनेमा प्रेमी हैं, अपने जो फैंस हैं, उनके दिल को बहलाया और अपने अंदाज से, अलग अंदाज से, अलग एंट्री से सबका दिल जीत लिया। और रोमांटिक रोल हो या फिर सीरियस रोल हो, उन्होंने बखूबी निभाई। और साथ में 80s में आते आते 70s 80s में आते आते उनके जो रोल्स

थे अलग किस्म के थे. पापा का रोल था, भाई का रोल था, और कौन भूल सकता है साजन की सहेली. तो कई बातें हैं, ये गाना हम बाद में चलाने वाले हैं. अभी के लिए अब फिर से राजेंद्र कुमार साहब पर पिक्चराइज ये गाना जो है आस का पंछी मूवी का गाना है, लता जी की आवाज़ में. और आस का पंछी मूवी में नज़र आए थे ऑब्वियसली राजेंद्र कुमार साहब, हमारे जुबिली कुमार. और इस गाने की मांग की है श्यामा रघुनंदन जी और कौकुब, और श्रद्धांजलि भी कर रही है, दे रही है इस महान कलाकार को. और जैसे ही हमने इस कलाकार की बात की, उनको बहुत श्यामा जी को उनकी जो फिल्में हैं, उनके जो गाने हैं याद आने लगे, और लिस्ट जो है काफ़ी लंबी हो रही है जी. तो बस ये गाना जो है लता जी की आवाज़ में, हाय मेरी ओली जी नज़र, और ये गाना जाएगा स्पेशली जयप्रकाश भैया के लिए है, नम्रता भाभी के लिए, साथ में केशव युधिश और श्यामा जी की जो सहेलियां हैं विना रामफॉल, विश्वानी दुखी, और साथ में नंदिनी ओकलू. और जितने लोग इस ऐसे गाने पसंद करते हैं सदाबहार गाने, और जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी के लिए, और जो लंच रहे हैं बना पेची, और गाने एंजॉय कीजिए ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जहाँ वैसे हमने सोचा था कि आज ना बस राजेंद्र कुमार साहब पर एक दो बातें करके हम कुछ और गाने चलाने वाले थे, मगर क्या हुआ, आप लोगों को इतना पसंद आया कि आप लोग फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको ये जो एक्टर है ना उन वे बहुत पसंद करते हैं, उनके गाने जो आप याद कर रहे हैं। तो इससे हमने सोचा कि क्यों ना इस कार्यक्रम को हम जारी रखें, राजेंद्र कुमार साहब पर पिक्चराइज जो फिल्में की गाने हैं और साथ में उनके जो सुपुत्र हैं कुमार गौरव के कुछ गाने हम चलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं इन पर पिक्चराइज गानों का। सो बस उनको जारी रखेंगे और साथ में आपको खुश करने वाले हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। वैसे कहते हैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत यादें होती हैं ना, समय बीत जाता है लेकिन यादों की खुशबू हमेशा दिल में महकती रहती है। आज के पूरे सफ़र में सुनेंगे सदाबहार और मधुर गीत, उनसे जुड़ी जो रोचक बातें हैं राजेंद्र कुमार साहब पर और उनके बेटे पर और जो कलाकार जो हैं उनकी यादगार जो कहानियां हैं, किस्से हैं और आपकी भी जो किस्से हैं आप सुना रहे हैं हमें, बस अच्छा लग रहा है। और जो आपकी कुछ फरमाइशें हैं और ऐसी बात है कि आप जानती हैं जितनी फरमाइशें आती हैं सबको पूरा करने में वो जो हमारा प्रोग्राम है बस नहीं होगा, तो जितना हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे आपको खुश करने का। नहीं तो जो गाने आपने नहीं मांगा है उसमें आपका नाम जोड़ देंगे, कोई बात नहीं, आपको गाना अवश्य आई एम श्योर पसंद आएगा। फिर जो गाना आपने सुना मोर इंडिया वाला, तो ये गाना कटुबोन की प्रेमिला जी है। प्रेमिला जी नमस्कार, और आपसे पहली बार बात हुई और ये गाना राजेंद्र कुमार साहब की याद में और तीन बहनों के लिए, बेटियां हैं लीना हैं, साइलेश, यश, रिया, वंदना, विद्या, कवेश, साथ में है लव और कुश, बिसेसौर और देवनारायण फैमिली के लिए था। अब हम चलते हैं दूसरे गाने की ओर। ये जो है ना ये फिल्म है, फिल्म एक्चुअली नहीं, लता जी की आवाज़ में है, हाँ जी, और इस गाने की मांग ये है गायत्री जी ने, उनकी जो बड़ी बहन है सुनीति जी जो 5 साल हो गए हैं जब से वे दुनिया छोड़कर चली गई, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी याद में। ये जो गाना है अमृता की ओर से है, गायत्री जी की ओर से, सदवीर, कमलेश, सुधा, जश, लक्ष्य और मिथिलेश की ओर से। तो श्रद्धांजलि सुनीति जी को।

जहाँ गोरा और काला मूवी का गाना है और एक्चुअली से एक दिलचस्प किस्सा हम सुनाने वाले हैं आपको। तो अनीता जी की मांग पर फिकॉम्प्लेक्स से पति राज के लिए, और वे कह रही है, अनीता जी कह रही है, ऐसे में जब देखा देखी हो रही थी, पति राज पति नहीं थे, राज आए हुए थे और ये फिल्म जो है वो चल रही थी टीवी पर और उनको ये गाना अत्यधिक पसंद है, तो पति राज के लिए अनीता जी की ओर से।

0: RM3 Radio.
1: जय चुगाना आपने सुना तू मेरे सपनों की रानी बनेगी इसमें नाम जोड़ना चाहेंगे साधना और मुकेश का और लालमाची बस अब सुनते हैं ये जो गाना कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा बस गुस्सा मत होइए अगर कोई गाना हम नहीं चला पाए तो बस गुस्सा मत होइए आपका प्यार चाहिए हमें और आपका आशीर्वाद आपके ब्लेसिंग्स और आपका साथ बस मिलते हैं इस गाने के बाद ये जो गाना है लेकर जाएगा एक बजे की ओर समाचार सुन पाएंगे इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी प्रोग्राम जारी रखेंगे सुहाना सफर 2 बजे तक ऐसे गाने और 2 बजे के बाद स्वीट स्वीट नाइटीज़

0: सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार. आशिता आपको नमस्कार.
1: नमस्कार पूनम जी, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मुकेश चंद माथुर, जिन्हें दुनिया गायक मुकेश के नाम से जानती हैं, भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे पहुंचे हुए गायकों में से एक मानी जाती हैं. मुकेश ने विशेष रूप से बॉलीवुड के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं, खासकर राज कपूर के लिए अपनी आवाज़ देने के कारण बेहद लोकप्रिय हुए और उनकी आवाज़ की जादू व यादों को ताज़ा करने के लिए अगले सितंबर में भारत के मुख्तार शाह अपने दूसरे कंसर्ट के साथ मॉरीशस आ रहे हैं, जहां वे मुकेश के सदाबहार बॉलीवुड गीतों पर आधारित दो विशेष संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जो कुद आर्ट सेंटर में लगेगा. करीब

तीन घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वे उन अमर गीतों को जीवंत करेंगे जिन्होंने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ है और महान गायक मुकेश को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल पोर्ट लुइस में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। हालांकि सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन को फिर से 60 वर्ष की आयु पर लागू करने की घोषणा की है, इसके बावजूद श्रमिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सेंट रोज स्ट्रीट से लेकर कंपनी गार्डन तक बड़ी संख्या में नागरिकों ने मार्च किया। इस दौरान उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की और उन सभी सुधारों का विरोध किया जिन्हें वे सामाजिक अधिकारों और अब तक हासिल लाभों के लिए नुकसानदायक मानते हैं। मॉरिशस में इस समय लगभग 4,600 विदेशी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि छुट्टियों के दौरान उनके लिए काम करने की अधिकृत सीमा प्रति सप्ताह 20 घंटे से बढ़ाकर 30 घंटे कर दी जाए। इस कदम का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को पूरा करना है, साथ ही विदेशी छात्रों को बढ़ती जीवन यापन लागत का सामना करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने कहा है कि उसने ईरान पर नए हवाई हमलों की एक और श्रृंखला शुरू की है। ये कार्रवाई तब की गई जब तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि उसने अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और अमरीकी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ये जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई है। अमरीकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद IOGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में स्थित एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं अरब अमीरात, कतर, क्यूवेत और बहरीन ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जवाब में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।

0: Choc Sancha Sunye. Bon number 2 Vakwame. Très bon number 2 Vakwame. 65 साल के 65 years old के श्री आनंद कुमार बिहारी. श्री आनंद कुमार बिहारी जिन्हें आनंद के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो.
1: उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टू डी एट 3 PM. रू फॉकुआ क्यूपिप में सत्तर साल के 70 years old के श्री केशवर दत्त श्री किसुन जिन्हें अनिल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी आज 3:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नालिनी श्री किसुन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डेट 3:30 PM. रिजर्वर रोड रोश्तिया में 78 साल की 78 years old की श्रीमती कृष्णावती बीकन पैदाशाम रोमिसो जिन्हें कृष्णावती के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके बेटे विक्रम बीकन के घर रोश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमुख शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टू डेट 1:30 PM. बी थ्री सीते त्वाबुचिक यूनियन वेल में 60 साल के 60 years old के श्री राजेश महदे जिन्हें पापों रेस्टोविया के मालिक थे उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणवानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3.
3: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका

0: मौका।
1: MBC Radio presents One Day RJ.
0: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: सुहाना सफर। जहाँ 1:11 हुए हैं, संडे है 12th of July 2026, और इस स्टार का नाम कौन थे आप जब पता ही है, फिल्म स्टार के स्टार कलाकार थे द ब्यूटी

ब्यूटीफुल रति अग्निहोत्री, साथ में थे राजेंद्र कुमार साहब के सुपुत्र कुमार गौरव। देखने में हैंडसम थे और टैलेंटेड भी थे, मगर उनकी जो उनका जो करियर था ना कुमार गौरव के, इतना चला नहीं। पहले पहले जो जब उनकी जो शुरुआत हुई तो बस एक दो जो फिल्म है, फर्स्ट फिल्म थी लव स्टोरी, और ये फिल्म सुपर हिट हुई और लोगों को बहुत पसंद आए, स्पेशली जो गाने थे और उन्होंने कदम रखा। इसके बाद जो एक दो, जैसे कहते हैं ना, कुमार गौरव रातों रात सुपरस्टार, और जो लड़कियां हैं ना, लड़कियों के चहेते बन गए थे। वैसे उनका असली नाम मनोज टुली, और पढ़ाई की बिशप कार्टन स्कूल शिमला में, और 1981 में उनके पापा राजेंद्र कुमार साहब ने उनको लॉन्च किया, लव स्टोरी बनाई जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद तेरी कसम, स्टार और मूवी नाम जैसी सफल फिल्मों में काम किया, और करियर में कुछ गलत फैसलों और फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण बाद में उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। और आज उनका जो उनका व्यक्तिगत जीवन है वे बहुत सफल हैं। शादी हुई नम्रता दत्त से, जो संजय दत्त साहब की बहन है, और दो बेटियां हैं सांची और सिया, और अब वे जो हैं एक व्यवसाय में वो बहुत बिजी होते हैं आजकल, और उनका जो है अपना खुद का बिजनेस है। तो बस उन्होंने जितने भी फिल्मों में काम किया, लोगों को उनका जो हैंडसम फेस याद है, उन पर पिक्चराइज गाने याद हैं। जैसे 90s में आते आते राजेंद्र कुमार साहब ने फिर से कोशिश की कि चलो अपने बेटे को फिर से कोई ऐसा फिल्म बनाते हैं जिसमें लोगों को उनका जो एक्टिंग है पसंद आएगा। एक्टिंग पसंद आया ना आया, मगर फिल्म इतनी चली नहीं, मगर उनके गाने, और साथ में थी द ब्यूटीफुल माधुरी दीक्षित। ओए होए, तो बस अब निकल पड़ते हैं और कदम बढ़ाते हैं उस जमाने में जब राजेंद्र कुमार साहब कितने हैंडसम हुआ करते थे। तो बस ये गाना जो है अनजाना मूवी का गाना है, लता जी की आवाज़ में और रफ़ी साहब की आवाज़ में। और इस फिल्म की जो गाना है, फरमाइश की है, आई है घोंघोप से विमला जी ने, बेटी है रोशिता के लिए, अनजाने मूवी का, अनजाना मूवी का गाना है। तो इसमें चलते हैं, नाम जोड़ते हैं कविता जी का, माधुरी जी का, जो ये गाने पसंद कर रहे हैं। और आप सुन रहे हैं RMF रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम। वेलकम जी।

जहाँ तो कल चला जाएगा फ्रॉम द मूवी नाम, इसमें नजर आए थे जो दो सितारे, दो तारे थे एक साथ हैं, कुमार गौरव साहब साथ में संजय दत्त, और अभी के लिए पंडित लास्कर की सीता जी, ये गाना आप सुनना चाहती थी ना भाई बहनों के लिए, आप एंजॉय कीजिए इसे।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सफर जो हो चला है 1:28 RM Free Radio मनोरंजन से जुड़े हुए हैं आप देविना है ऑन द माइक और आपका साथ दे रहे हैं 2 बजे तक कुछ पुराने गाने लेकर सदाबहार गाने लेकर और 2 बजे के बाद आप सुन पाएंगे स्वीट स्वीट नाइटीज चलिए जरा हट के कुछ गाने चलाते हैं अभी के लिए बस विश करना चाहेंगे सभी जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं कल मनाया होगा या कल मनाने वाले हैं सो बस आप सभी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे और आज है स्वीट स्वीट निष्ठा गुरन सिंह का बर्थडे सो ऑन द होल फैमिली गुरन सिंह फैमिली विश निष्ठा ए हैप्पी बर्थडे और जो हमारे दोस्त हैं उनका बर्थडे था फ्राइडे को मिको गुरप्पा जो हैं सो फ्रॉम द होल टीम ऑफ मुटू को स्पेशली सुनील है कवि किशन और फुल यू एंड आई मेलोडीज वाले जो मेंबर्स हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं विश कर रहे हैं मिको को हैप्पी बर्थडे टू यू सो विश यू ऑल हेल्थ वेल्थ आपकी जो जिंदगी है हमेशा खुशी से भरी हो और आप अच्छे स्वास्थ्य में रहे और आपको जो भी खुशी मिले आप उसमें खुश हो एंड वट एवर यू डिज़र्व यू गेट इन लाइफ सो बेस्ट विशेज फ्रॉम द होल टीम ऑफ RM Free रेडियो मनोरंजन

जी हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। और कहते हैं ना, खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिनमें हम प्यार से जीते हैं, जिन्हें हम प्यार कहते हैं। अब सुनिए एक ज़बरदस्त गाना, और ये गाना जाएगा टुमिको एंड साथ में निश्ता, और आवाज़ आ डी बर्मन, फिल्म है कस्मे वादे। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जहाँ कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लूँ मजा, आज जो है बस इसमें जी ले क्योंकि पता नहीं कल आने वाला या नहीं, मगर आगे के लिए तो प्लान करना ही है। मगर हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ये भी गाना हम आपको सुनाना चाहते हैं अभी के लिए। और ये सभी जो राजेंद्र कुमार साहब के फैंस हैं, फिल्म संगम का गाना है, तो साजिद आपके लिए रोजिल से है, साथ में है सरिता कटुबोन, और आपके जो बेटे हैं उनकी शादी होने वाली है 9 अगस्त को, सो बेस्ट विशेज। और ये होगा कबीर और करिश्मा में, और साथ में बहू भी जो होने वाली बहू है करिश्मा, और जो बेटी है वो भी है करिश्मा, सो फ्रॉम द होल फैमिली इन द होल हमारी जो टीम है आपको कहेंगे बेस्ट विशेस। और यहाँ पर जो गाना है वो आने वाला है इसके बाद, और एक है नंदा जी, पुनीता फैमिली के लिए, गणेश फैमिली के लिए, अविनाश, अभिषेक, आशील, दिव्या, अश्विना, गुल्लू और अवनी, साथ में है जो है माधुरी जी, नंदा जी और वाकुआ।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: दिल का एहसास जानना है तो प्यार करके देखो, अपनी आंखों में किसी उतार कर तो देखो। चोट लगेगी, दर्द तुम्हें होगा, जरा अपना दिल एक बार हार के तो देखो। जो दिल प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हंसेगा रोएगा, बस प्यार ही करना है, क्योंकि दिल जो है ना प्यार का सागर है। और इस प्यार के सागर में डुबकी लगाने की औकात सभी में नहीं है, मगर कुछ लोग डुबकी लगा लेते हैं मगर इसमें जो है किनारे नहीं पहुंच पाते, कुछ लोग किनारे पहुंच पाते हैं। तो आप लोग अगर प्यार कर रहे हैं तो आपको प्यार मुबारक हो। बस प्यार का सागर देखा है तुम्हारी चंचल नैनों में, मुकेश साहब की आवाज़ में, साथ में आशा जी, प्यार का सागर मूवी का गाना। ये रहा सजिता जी आपके लिए, साथ में प्रकाशवती जी, ये गाना हम आपके नाम करेंगे। साथ में ब्रह्मस्थान से उषा जी, आप लोग सभी लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं ये शो, और गाने भी लाजवाब हैं। सो बस आपकी ही लोग की तरह जो है गाना लाजवाब, प्रोग्राम लाजवाब, आप भी जो हमारे लिसनर्स हैं लाजवाब हैं, बस इसको एंजॉय कीजिए।

RM3 Radio.

ये गाना था तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए फॉर मालिनी जी और साथ में अविनाश के लिए हाँ जी बीती छाया के लिए पति है इंद्रजीत।

ये गाना मुकेश साहब की आवाज़ में, और ये गाना जो है इसकी मांग आई है बाबू अनवथवा जो कटोबोन दुकान में है, काम कर रहे हैं साथ में हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। और आपको कहेंगे शुभाहा जितने लोग अभी तक भोजन कर रहे हैं और उनके पूरे परिवार के लिए फिल्म है मन चली।

जिस गाने में नाम जोड़ते हैं रेहाना जी का और ये गाना जो है हमें ले जाएगा अगले गाना जो है हमें ले जाएगा 2 बजे के समाचार की ओर और इसके बाद होंगे कुछ बहुत ही रोमांटिक गाने 90s वाले और आज खास तौर पर हमने चुना है नदीम श्रवण द ड्यू कंपोजिटर द जैसे कहेंगे ना वो संगीतकार जो है उनकी जो फिल्में हैं उनकी जो गाने हैं बहुत रोमांटिक थे तो बस आशिकी से लेकर कितने गाने उन्होंने दिए हैं बस उन्हीं गाने को हम लेकर आएंगे 2 बजे के बाद 3 बजे तक तो बस एंजॉय द शो सुहाना सफ़र प्रोग्राम रेहाना जी और साथ में मना फाउडर जी जितने लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं अगर और हमसे बातें नहीं हो पा रही हैं जिनकी मैसेजेस हम नहीं पढ़ पाएंगे आप सबों के लिए ये गाना

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में वाफी स्वागत है सबका। निजी क्षेत्र मॉरिशस में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बना रहा है। एबेन में स्थित स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल ने शुक्रवार 10 जुलाई को एक नई लेजर इन्फ्रैक्टिव सर्जरी सेंटर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी उपस्थित रहे। उन्होंने मॉरिशस में आंखों से संबंधित बीमारियों के उपचार में निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि वर्तमान में 2400 मॉरिशन सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में मोटियाबिन यानी कैटराक के ऑपरेशन का इंतजार कर रही है। मॉरिशस में इस समय लगभग 4600 विदेशी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि छुट्टियों के दौरान उनके लिए काम करने की अधिकृत सीमा प्रति सप्ताह 20 घंटे से बढ़ाकर 30 घंटे कर दी जाए। इस कदम का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को पूरा करना और साथ ही विदेशी छात्रों को बढ़ती जीवन यापन लागत का सामना करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है। और कल पोर्ट लुइस में शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। हालांकि सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन को फिर से 60 वर्ष की आयु पर लागू करने की घोषणा की है, इसके बावजूद श्रमिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सेंट रोज स्ट्रीट से लेकर कंपनी गार्डन तक बड़ी संख्या में नागरिकों ने मार्च किया। इस दौरान उन्होंने अपनी

0: चिंताएं व्यक्त की और उन सभी सुधारों का विरोध किया जिन्हें वे सामाजिक अधिकारों और अब तक हासिल लाभों के लिए नुकसानदायक मानती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में एक शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है। ये एक सप्ताह के भीतर देश में आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। तूफान के रास्ते में आने वाले इलाकों से लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बावी नामक इस तूफान का अधिकतम फैलाव लगभग 1000 किलोमीटर है, जो लगभग फ्रांस की चौड़ाई के बराबर माना जा रहा है। ये तूफान शनिवार शाम सबसे पहले तटीय शहर ताइजू से टकराया और इसके बाद आधी रात के आसपास वेंजाओ में दूसरी बार जमीन से टकराया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद। साथ रहे, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की बीबी साबेरोन रामजनी पैदाशी नाम कुदरत इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज उनके मकान क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिगहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल आफ्टरवर्ड्स टुडे। अली मकदम बीज तुम्बू में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रीनिवासन परशुरामन जिन्हें शिवम के नाम से ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके भाई अजागैन तंद्रायन के घर बीज तुम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसानिन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। You're listening to RM3 Radio Mana।

रेडियो वंस अगेन आप सभी का हम स्वागत करते हैं. वेलकम जी ऑन ऑरियन फ्री रेडियो मनोरंजन. देवीना है आपके संग. अब दोस्तों हो चुका है टाइम टू गो बैक इन द 90s और इससे ऊपर कुछ गाने. और स्पेशली आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने कि आप लोग खुश हो ही जाएंगे, क्योंकि ये गाने सुन सुनकर बहुत से लोग हम लोग बड़े हुए हैं. कुछ लोग जवानी में थे, कुछ लोग फैमिली के साथ उस समय थे तो रहते थे एक साथ. और उस समय आपको पता था ना कि जैसे लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, तो सभी लोग रेडियो ऑन करके हम लोग कैसेट से ये गाने सुनते थे. अगर हम कहें आशिकी, साजन, परदेस या फिर रंग, आपको किस संगीतकार की याद आती है? बस आपको बता देते हैं, इन सब लाजवाब गानों में संगीत दिया था वो महान, वो फेमस प्रसिद्ध संगीतकार, ड्यूओ संगीतकार जिसे कहते हैं ना, वे बहुत सफल हुए. ये थे नदीम श्रवण. और उनके म्यूजिक का जरा हटके था. और उस समय कुमार सानू साहब, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण साहब सब ने इनको सहारा दिया. नदीम श्रवण जी ने और इनकी आवाज़ों में जो गाने थे सुपर डुपर हिट हुए. तो बस रविवार की सुनहरी दोपहर में आपका फिर से वेलकम करेंगे सुहाना सफर प्रोग्राम में. और बस प्रेम, एहसास और मधुरता को अपनी धुनों में इस तरह पिरोया इन्होंने कि उनके गीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसे हुए हैं. अभी आपने सुना फिल्म सलामी का गाना हारे दिल, कहना आसान नहीं दोस्तों. और ये जो शब्द हैं गले में आते आते सोच में पड़ जाते हैं कि कहें या ना कहें. और हमारे जो दोस्त हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ गीतों के 90s वाले, ये भी चलाएंगे, मगर आज खास तौर पर नदीम श्रवण साहब. तो सुनते हैं आशिकी, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू साहब ये गाना.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: बजकर 23 मिनट आज संडे 12 जुलाई 2026 सुबह टू द स्टूडियो और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर देवीना है आपके संग 3 बजे तक। अभी आप हम चला रहे हैं स्वीट स्वीट नाइटीज वाले गाने और आज कुछ एक दो गाने नदीम श्रवण साहब जो डुएट संगीतकार थे उन के गाने हम चलाने वाले हैं आज। तो अभी आपने सुना फिल्म दीवाना से लिया गया मदहोश कर देने वाला गाना और इसमें नजर आए थे वाट इज जमाना, बहुत ज़माना क्या ज़माना था। शाहरुख खान थे, ऋषि कपूर साहब थे, साथ में द ब्यूटीफुल लेट एक्ट्रेस दिव्या भारती। और फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए और हमें एक एक शब्द मालूम है उन गाने का और हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। बस क्या कमाल थे उस समय के जो गाने थे और साथ में नदीम श्रवण का म्यूज़िक हो तो क्या बात। और वैसे उस समय 90s की बात कर रहे हैं तो वो कैसेट का ज़माना था। कैसेट को रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके गाने सुनते रहते थे, बजाते रहते थे और लोग अपने पसंदीदा गीतों को बार बार सुनते थे और हर धुन किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ जाती थी। जहाँ स्वीट ब्यूटीफुल लिरिक्स, ब्यूटीफुल म्यूज़िक, अगर हम कहें दिल है कि मानता नहीं, वाओ। उसमें थे आमिर खान साहब, साथ में थी द ब्यूटीफुल पूजा भट्ट और महेश भट्ट की मूवी थी और यह जो फिल्म है ना यंगस्टर्स को स्पेशली बहुत पसंद आई थी और उस समय हम भी यंग थे तो बस उस फिल्म को हम हमेशा देखते थे, गाने गुनगुनाते थे, गाते थे और गीतों में आवाज़ें थी जो हैं अनुराधा पौडवाल की थी, बाबुल बबला मेहता और कुमार सानू साहब और उन्होंने अपनी आवाज़ दे दी इन गानों के लिए। और ये जो अगला गाना है ना बहुत ही रोमांटिक है तो जाएगा वंस अगेन फॉर द होल टीम जो वहाँ पर बैठे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। क्यूपिप में है माइक, रवीन, सुनील और सभी जो दोस्त हैं, ये गाना आपके लिए।

फिल्म हलचल का गाना है या रिस की मांग की है। नमस्ते जी, ये मैसेज आया है, हैप्पी संडे आपको भी। हमेशा की तरह सुशीत मैसेज भेजने वाले हैं ज्ञान बिहारी जी और वाइफ सबिता के लिए। गीता है उनकी, उनके सिस्टर इन लॉ संजीव, सुनील, रानी और सभी लिसनर्स के लिए ये है। और कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग शो वाज ऑन राजेंद्र कुमार साहब, थैंक यू। सो बस पहली दफ़ा इस दिल में हलचल सी होने लगी।

0: या इन गानों से यकीनन आपके दिल में हलचल सी होने लग गई होगी और बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। आगे आगे देखिए होता है क्या। बस यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ। तो सुनते हैं अगला गाना जो है, ये जाएगा खास तौर पर हमारे जो हरीश बाबू हैं, हमेशा रोमांटिक मूड में होते हैं, खास अनु के लिए। ये गाना फ्रॉम द मूवी हमराज।
1: RM3 Radio. Radio.
0: तुम क्या है जिंदगी में, जिंदगी बदल दी। हम क्या थे, हम क्या बन गए तुम्हारे प्यार में। बस प्यार मुबारक हो आप सभी को, जितने लोग प्यार में हैं। टू ऑल द लवर्स, टू ऑल द रोमांटिक पीपल, आप सभी के लिए ये गाना। वैसे उदित नारायण साहब की आवाज़ में ये जो गाना है, आई एम नॉट फाइंडिंग इट हरीश जी, अलका की आवाज़ में ये गाना आपके लिए।

जन्नतिम शवन, जूरी संगीतकार की बातें हम कर रहे हैं आज। एक दो गाने और एक दो आपके पसंद के, और अगर हम उनके बात कर रहे हैं तो जो अवार्ड्स उनके मिले, उनको जो अवार्ड मिला था वो 1991 में फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर आशिकी, 1992 में फॉर साजन, 1993 में दीवाना, 1997 में राजा हिंदुस्तानी, 1998 में परदेस, और 2003 में 2003 में राज मूवी के लिए। बस सभी के लिए रंग मूवी का गाना आप सबों के नाम।

जान तेरे नाम रोमांटिक मूवी था ऑफ द 90s और इस फिल्म से लिया गया ये गाना कुमार सानू साहब की आवाज में साथ में अलका याग्निक उषा सीता जी ऑफ अमोरी ये आपके पूरे परिवार के लिए सभी लिसनर्स के लिए हमारे टीम के लिए थैंक यू सो मच

2:54। देखते ही देखते हमारा जो 3 घंटों का प्रोग्राम है ना वो ऐसे फुर हो गया, मगर आई एम श्योर आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं इन गानों के साथ। वैसे दोस्तों, अगर आप भी 90s के दशक के इन गानों के साथ बड़े हुए हैं, आप इन गानों को पसंद करते हैं, तो यकीनन ना आज की सियाह दोपहर जो है ना आपके लिए यादगार बना होगा। वैसे जो म्यूजिक है ना समय को रोक नहीं सकता, लेकिन यादों को जरूर ताजा कर देता है। नदीम शवन की धुनें इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ऐसे प्यारे प्यारी बातें, प्यारे गाने, प्यारे म्यूजिक बस यहीं पर मिलता है आपको मेरे दोस्त, ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। और हमेशा की तरह हर रविवार को हम आते हैं एवरी संडे 12 से 3 बजे तक, सुहाना सफर प्रोग्राम दीविना है आपके संग। और अभी हो चला है बस आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें करने के साथ आपसे विदा लेने का। होप कि जो पुराने गाने हैं, सदाबहार गाने, साथ में रोमांटिक गाने जो हमने सजाए प्रोग्राम में, यह संगीतमय यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपने भी अपनी कई खूबसूरत यादों को फिर से जी लिया होगा। इसी प्यार और अपनापन आप जो हैं हम पर बरसते रहिए। इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, टाइम टू साइन ऑफ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और संगीत से अपना रिश्ता हमेशा बनाए रखिए। आपको भेजते हैं ढेर सारा प्यार, हमारे बाद आएंगे आए ऐसा भी होता है प्रोग्राम लेकर आज प्रताप सिंह। फिर मिलते हैं, लव्स ऑफ लव, बाय बाय, एंजॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दीवाना।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस कारोबारों के लिए अफ्रीका संभावनाओं से भरी एक मंडी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बदौलत व्यापार की रुकावटें कम हो रही हैं, जिससे निर्यात करने वालों के लिए नए मौके खुल रहे हैं। मॉरिशस महिला ठेकेदारों को इस समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदो में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटरी स्थापित करेगी। निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को इबन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको एक ऐसे संगठन से वाकिफ कराते हैं जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत हैं। साकिम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस, इस मॉरिशस नामक संगठन, ये एक मॉरिशस नामक संगठन है। ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने कहा है कि उसने ईरान पर नए हवाई हमलों की एक और श्रृंखला शुरू की है। ये कार्रवाई तब की गई जब तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि उसने अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और अमरीकी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ये जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई। अमरीकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद

0: IOGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में स्थित एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया. वहीं अरब अमीरात, कतर, क्वैत और बहरीन ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जवाब में कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के धन्यवाद. साथ रहे सुन पाएंगे एक शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. एमिल पीटर क्यूपिप में 85 साल की 85 years old की बीबी साबिरून रामजोनी पैदाश नाम कुदरत इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज 4:45 पर इनके मकान एमिल पीटर क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिगा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 4:45 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Continuous music.
5: RM3.
6: ऐसा भी होता है on RM3.
7: कैसे विचित्र है ये दुनिया और कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर. किसी के दिल में किसी के लिए दया नहीं, ना ही सहानुभूति है. इंसान इंसान के खून का प्यासा क्यों हो गया है? भगवान ने इंसान को क्या सोचकर बनाया और इंसान क्या कर रहा है? क्या सुबह घर से निकलते हैं तो शाम को घर लौटेंगे? क्या भरोसा है जिंदगी का? कहाँ पर जीवन है, कहाँ पर मौत है, कौन जान सकता है? कितने बेदर्द है यहाँ पर लोग. जिसे हम प्यार देते हैं, खुशियाँ देते हैं, वही हमारा दिल तोड़ता है, वही हमें धोखा देता है. जो अनजान है वो अपना बन जाता है, जो अपना है वो पराया बन जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, स्वीकार कीजिए औजे प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार. शाम के 3:04 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन. ऐसा भी होता है कार्यक्रम, अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में कुछ ऐसे समाज है जहां पर स्त्रियां काम करके पैसा घर में लाती है और पुरुष घर के कामकाज करते हैं। पुरुष बर्तन मांजते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। जी हाँ, दुनिया में ऐसे भी समाज है, उन्हें हम कहते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटीज, जहाँ पर स्त्रियाँ जाती है काम करने और पुरुष घर पर रहते हैं। ये तो पहली बार आप सुन रहे हैं, शायद आपको हंसी भी आ रही होगी, कैसे पुरुष हैं जो घर पे रहते हैं। पर इसका नाम ही है मैट्रियार्कल समाज, मैट्रियार्कल सोसाइटी। स्त्रियां काम पे जाती है, काम से लौटती है तो पति महोदय क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चों के डायपर चेंज करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़ा धोते हैं। और ये पुरुष खुश हैं क्योंकि ये समाज ही ऐसा है। बहुत से ऐसे देश है, जैसे अफ्रीका में है, बहुत से ऐसी जगह है ट्राइबल जो सोसाइटीज़ होते हैं, जहाँ पर महिलाएं काम पे जाती है, महिलाएं खेत में काम करती है, काम करके लौटती है तो पति महोदय पत्नी को गर्मा गर्म चाय देते हैं, खाना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा भी होता है, जी हाँ, दुनिया में ऐसे भी समाज है जहाँ पर स्त्रियाँ काम करके आमदनी लाती है, पैसे लाती है, और पुरुष घर पे रहते हैं और घर का सब काम काज करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप में से कोई पुरुष ऐसा उसका ऐसा जीवन उसको मिल जाए तो क्या वो करेगा? मैं तो भाई बिल्कुल नहीं करूँगा। हालांकि मैं घर के बाहर भी काम करता हूँ, घर में भी आकर मैं बर्तन मांज सकता हूँ, कपड़ा धो सकता हूँ, खाना तैयार कर सकता हूँ, पर केवल अगर पत्नी काम करके पैसा लाए और मैं घर पर रहूँ, नो नो नो नो, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। पर शायद कुछ लोग हैं जो सहमत होंगे ऐसे जीवन से कि पत्नी काम करके पैसा लाती है और पुरुष घर में काम करता है। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, दुनिया में ऐसा भी होता है।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।

0: MBC Radio presents वांडे आज। MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: Don't miss it.
2: RM3 Radio.
3: इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाली सालों में बहुत से ऐसे छोटे छोटे टापू हैं जो समुद्र में हमेशा के लिए समा जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हिंद महासागर में एक टापू है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव आइलैंड्स आर नोन फॉर इट्स ब्यूटी, पर धीरे धीरे जो है वहाँ पर समुद्र का पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन मालदीव आइलैंड्स समुद्र में समा जाएगा। OMG, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज़ मालदीव्स। मालदीव्स में बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट अपना हनीमून मनाने आते हैं, एंड बिपाशा बासु, जहाँ उनकी जब शादी हुई थी, सो शी केम विद हर हस्बैंड फॉर हनीमून इन मालदीव आइलैंड्स। मालदीव बहुत ही खूबसूरत है और अमिताभ बच्चन साहब भी अक्सर यहाँ पर आते हैं रिलैक्स करने के लिए। बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पर। सो एक दिन अगर आपको मौका मिले तो जाइएगा मालदीव घूमने। वहाँ पर कुछ ऐसे होटल है जो समुंदर के अंदर है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। अगर आप अपने कमरे में हैं और आपका जो कर्टेन है, जो रिडो है, अगर आप हटाते हैं तो आपको दिखेगा बड़ी बड़ी मछलियाँ, रुकें, लाबालेन, ये सब। और वहाँ के रेस्टोरेंट में अगर भोजन कर रहे हैं रात को, तो वो जो होटल है जो समुंदर के अंदर है, सर रेस्टोरेंट में आप बैठ कर खा रहे हैं और उधर शीशे के उस पार आप बड़े बड़े मछलियाँ को देख सकते हैं। वो मछलियाँ आपको देख रहे हैं कि आप अपने प्लेट में क्या खा रहे हैं। क्या बात है। यस, इन मालदीव वी हैव सच होटल्स विच आर इनसाइड वाटर। उन्हें इस तरह से बनाया गया है, बहुत ही महंगा है इन सब होटलों में रहना, पर लोग जाते हैं। आई नो मेनी मॉरिशियंस आल्सो गोइंग देयर। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी स्कूल की छुट्टियाँ आने वाली है, शायद आई एंड माई किड्स विल गो देयर एंड हम देखेंगे कि ये जो मालदीव आइलैंड से कैसा है। पर डर तो इस बात का है कि ये मालदीव आइलैंड जो है, मालदीव जिसे हम कहते हैं, ये क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुंदर का पानी है जो बढ़ता जा रहा है, सो एक दिन ये छोटे छोटे द्वीप जो है समुंदर में समा जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। फिर एक दिन कुछ लोग लिखेंगे, वंस अपन ए टाइम देयर वाज एन आइलैंड कॉल्ड मालदीव्स, बट वन डे इट गॉट अंडर वाटर। ऐसा भी होता है दोस्तों।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे हम पॉलीगामी कहते हैं? जी हाँ, यानी कि बहुविवाह। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वैवाहिक व्यवस्था जहाँ पर एक स्त्री एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ शादी करके एक ही घर में रहता है। बहुपत्नी विवाह, पॉलीजिनी। एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती है और सब साथ में रहती है। और पॉलीएंड्री उसे कहते हैं जहां पर एक महिला के एक से ज़्यादा अधिक पति होते हैं और ये साथ में रहते हैं, पर ये काफ़ी दुर्लभ है। पर जब पॉलीगामी की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज है, देश हैं जहां पर एक पुरुष तीन चार स्त्रियों के साथ शादी करके एक ही घर में रहता है। ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, मध्य पूर्व और कई एशियाई क्षेत्रों में, जहाँ पर सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं के कारण ऐसा होता है। और ये देश है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। सो इन सब जगहों में एक पुरुष जो है तीन चार या पाँच स्त्रियों के साथ शादी करके एक ही छत के नीचे रहता है। और बहुविवाह के कारण क्या है? पॉलीगामी कारण धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराएं, बड़े परिवार की इच्छा, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण, कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक या कृषि संबंधी आवश्यकताओं के कारण ऐसा होता है। अब चुनौतियां क्या है? सभी जीवन साथियों के साथ समान व्यवहार बनाए रखना कठिन हो सकता है। अगर मान लीजिए एक पुरुष है, उसके पांच पत्नियां हैं, तो अगर वह कुछ खरीदता है तो पांचों को बराबर उसे देना चाहिए। संपत्ति और उत्तराधिकार के विवाद हो सकते हैं, बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा की जटिलताएं, आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर एक पुरुष है, उसने पांच स्त्रियों के साथ शादी की है और पांचों के दो दो बच्चे हैं, तो 5 times 2 इट्स 10 children। अब स्त्रियों को उनकी देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना और इतना परिवार, सो द पर्सन मस्ट बी रिच। अगर रिच नहीं है तो इतने लोगों का खाना वो कैसे देगा? सो एक और है पॉलीगामी, तो दूसरे पॉलीएंड्री। यह कम पाया जाता है दुनिया में। इतिहास में इसके उदाहरण हिमालयी क्षेत्रों के कुछ समुदायों में होता है, जैसे भारत, नेपाल और तिब्बत में, जहाँ पर एक स्त्री दो तीन पुरुषों के साथ शादी करके एक छत के नीचे रहती है। बट दिस इज क्वाइट लो कंपेयर टू पॉलीगामी। पॉलीगामी बहुत है। और बेशक जैसे हमने कहा, अफ्रीका के बहुत से जगहों में ऐसा है, नाइजीरिया, केन्या, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर में भी लोग जो है एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ शादी करता है। और मान लीजिए एक पुरुष की पांच पत्नियां हैं, तो पांचों स्त्रियां प्रेम से एक ही छत के नीचे रहती है। अगर पुरुष कहीं जाता है किसी फंक्शन में, तो पाँचों पत्नियाँ साथ में जाती है और खुशी खुशी रहती है, खुश रहती है ये पत्नियाँ एक पति के साथ। और मान लीजिए अगर आपके यहाँ शादी है, तो आपने इनवाइट किया है उस फैमिली को, तो आप देखेंगे कि वह पुरुष अपने पांचों पत्नियों

बहनों के साथ एक ही टेबल में भोजन कर रहा है। बाप रे बाप, क्या बात है। यहाँ पर एक पत्नी होने से इतने हमें सितारे नजर आ जाते हैं, और या वहाँ पर एक पुरुष की इतनी पत्नियाँ, क्या बात है। दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

दोस्तों आप में से बहुत से लोग हैं जो नॉन वेज है और शायद आप केकड़े खाना पसंद करते हैं। Why not in this cold weather a crab soup? तीता crab soup. कुछ लोग crab की तरकारी बनाते हैं, but you know कि दुनिया में दो ऐसे islands हैं जहाँ पर कैंकरों की भरमार है. Yes, ये दो islands हैं, Coco Island और Christmas Island. क्रिसमस द्वीप

द्वीप क्रिसमस आइलैंड हिंद महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी क्षेत्र है, एक्सटर्नल टेरिटोरी। उसका नाम 25 दिसंबर 1643 में क्रिसमस दिवस पर डाला गया था।

आने वाले पर्यटक इन गतिविधियों का आनंद लेते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, स्नर्कलिंग, पक्षी अवलोकन, लाल केकड़ों के प्रवास को देखना और जनसंख्या और इसकी जनसंख्या और संस्कृति के बारे में बताएं तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 2000 लोगों के आसपास है। यहाँ चीनी, मलय और यूरोपीय फूल के मूल यहाँ पर चीनी, मलय और यूरोपीय मूल के लोग रहते हैं। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, जबकि मंदारिन और मलय भी व्यापक रूप से बोली जाती है। सो याद रखिए, दो ऐसे आइलैंड्स जहाँ पर कैंकरे ही कैंकरे हैं, लाल लाल बड़े बड़े कैंकरे, ये है क्रिसमस आइलैंड और कोको आइलैंड। जैसे मानसी आप एक आइलैंड में जी रहे हैं जहाँ पर कैंकरे ही कैंकरे है, और अगर ऐसा बात है ऐसी बात है तो आप अगर नॉन वेज है तो रोज़ आप कैंकरे को पकड़ कर सूप बनाइए या मसाला में पकाइए और कैंकरे का आनंद लीजिए। सो रिमेंबर, अगर कहीं पर कोई चल रहा है और कोई आपसे पूछे, ओके टेल मी द नेम ऑफ द टू आइलैंड्स वेयर देयर आर मिलियंस ऑफ रेड क्रैब्स, सो जवाब होगा क्रिसमस आइलैंड एंड कोको आइलैंड।

मॉरिशस में दो प्रकार के सीजन हैं, एक तो विंटर और एक समर। विंटर में काफ़ी ठंड पड़ती है और समर में गर्मी होती है। फॉर्चुनेटली मॉरिशस में बर्फबारी नहीं होती, क्योंकि मॉरिशस एक ऐसा टापू है जो इक्वेटर लाइन के नीचे है। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर जोरों की बर्फबारी होती है, इतनी बर्फबारी होती है कि लोगों की जान भी जा सकती है। यस, बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर स्नो है, ज़बरदस्त बर्फबारी। ये कंट्रीज इस तरह से है,

ये कंट्रीज इस तरह से ठंडी सर्दियाँ होती है तथा भारी बर्फबारी होती है। जापान तीसरे स्थान पे है, विशेष रूप से होक्काइडो और जापान के पश्चिमी तट पर विश्व की सबसे अधिक बर्फबारी वाली क्षेत्रों में से कुछ स्थित है। फिर है नॉर्वे, पर्वतीय क्षेत्रों में हर वर्ष भारी हिमपात होता है। फिर है स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत के कारण यहाँ सर्दियों में खूब बर्फ गिरती है और यह स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। आइसलैंड वो जगह है जहाँ लंबे समय तक बर्फ और हिमाच्छादित क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर है फिनलैंड, सर्दियों में अधिकांश भाग बर्फ से ढक जाता है। स्वीडन में उत्तरी क्षेत्र में भारी बर्फबारी अत्यधिक ठंड पड़ती है। फिर है ऑस्ट्रिया जहाँ पर आल्प्स पर्वत क्षेत्र में हर वर्ष अच्छी मात्रा में बर्फबारी होती है। एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पर अलास्का, न्यूयॉर्क राज्य के कुछ भाग और रॉकी पर्वत क्षेत्रों के वहाँ पर बहुत अधिक हिमपात होता है। और कनाडा में जब बर्फबारी होती है तो वहाँ की जो नदियाँ हैं, जो सागर है, ग्लासों बन जाते हैं। जी हाँ, आप उस पर चल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई समुंदर या नदी में चल रहा है और क्या होता है कि वहाँ के जो घर के बाहर जो जानवर होते हैं वो लोग स्नो से ढक जाते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है या चिड़िया है, तो वो एक ही जगह पर ऐसे खड़े रह जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, इतनी बर्फबारी होती है। जस्ट इमेजिन, अगर मॉरिशस में इतनी बर्फबारी हो तो हमारा क्या हाल होगा। गब्बर, कितने आदमी थे। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर मॉरिशस में ऐसा हो तो क्या हो सकता है। क्लाइमेटिक चेंज के कारण बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हु नोज़, वन डे वी गेट स्नो है। नो, इट्स अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि हम इक्वेटर लाइन के नीचे हैं।

चलिए थोड़ा सा डांस करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। ऐसा भी होता है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। होप यू लाइक इट। 94.95.6 MHz पर हमारा प्रसारण चल रहा है, जहां से भी आप सुन रहे हैं, यू मोस्ट वेलकम। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर्स है जो बहुत मेहनती होते हैं और उनसे ज़्यादा मेहनती कोई और हो ही नहीं सकता। उन्हीं क्रिएचर्स में से एक है चींटी, आंट जिसे हम फूमी कहते हैं। चींटी पृथ्वी पर सबसे परिश्रमी और संगठित कीटों में से एक है। यह लगभग 14 करोड़ वर्ष से पृथ्वी पर मौजूद है। दुनिया में चींटियों की 14,000 से अधिक जात प्रजातियां हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुल प्रजातियां की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। और चींटियां के प्रकार, एक चींटी कॉलोनी में मुख्य तीन प्रकार की चींटियां होती है। रानी चींटी द क्वीन, जो अंडा देती है, श्रमिक चींटियां वर्कर्स, जो भोजन जुटाती है और घोंसले की देखभाल करती है और बच्चों की रक्षा करती है। नर चींटियां मेल्स, यानी कि ये मुख्य रूप से प्रजनन के लिए होती है। भोजन, चींटियां सर्वहारी होती है, ये खाती है चीनी और मिठाइयां, बीज, फल, छोटे कीड़े, मृत जीवों के अवशेष। और ये चींटियाँ रहती हैं कहाँ पर, ये चींटियाँ रहती है मिट्टी, पेड़ों, लकड़ी के भीतर और चट्टानों के नीचे अपने घोंसले बनाती है। इनके घर को चींटी का बिल, आंतेल कहा जाता है, और अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक भार उठाती हैं चींटियाँ। समूह में मिलकर काम करती है, भोजन का भंडारण करती है और फेरोमोन यानी कि रासायनिक संकेत के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आपने कभी देखा चींटियां जब चलती है तो एक दूसरे को छू देती है और पता नहीं क्या बोलते हैं। अपने समूह की रक्षा के लिए संगठित रूप से कार्य करती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करती है चींटियां। मृत जीवों और जैविक पदार्थों को विघटित करने में योगदान देती है। कई पौधों के बीच फैलाने में मदद करती है और प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोचक बात यह है कि चींटियों की आंखें छोटी छोटी होती है लेकिन उनके सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। कुछ प्रजातियां खेती भी करती है, जैसे लीफ कटर चींटियाँ जो कवंक उगाती है। कुछ चींटियाँ अपने शरीर के अम्ल छोड़कर दुश्मनों से रक्षा करती है। और चींटी से मिलने वाली सीख, चींटी जो है बहुत मेहनत और अनुशासन चींटियां जो होती है बहुत मेहनती और अनुशासन को फॉलो करती है। एकता में उनकी शक्ति होती है, वो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और चींटियां जो हैं भविष्य के लिए तैयारी करना, भविष्य की तैयारी करते हैं। और चींटी आकार में भले ही छोटे हो लेकिन उसकी मेहनत, अनुशासन, संगठन और सहयोग की भावना मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए चींटी को प्रकृति का सबसे परिश्रमी और अनुशासित जीवों में एक माना जाता है। अब जब आप चींटी को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कितनी मेहनती है, काश हम इंसान भी इतनी मेहनती होते तो आज हम कहां से कहां पहुंच जाते। आपको याद है ना कहानी, जॉन ला फोंटेन की कहानी, फ्रेंच लेखक ने लिखा था ला सिगाल ए ला फूमी। अब आपको पता चला कि उसने क्यों लिखा था ये फाब दे ला फोंटेन, ला सिगाल ए ला फूमी।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: सुनते समाचार आशिता जी के साथ नमस्कार।
3: नमस्कार संजय जी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटोरी स्थापित करेगी। बात करें अब ऐसे संगठन के बारे में जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत है। साकीम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस नामक ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को एबेन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में एक शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है। ये एक सप्ताह के भीतर देश में आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। तूफान के रास्ते में आने वाले इलाकों से लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बावी नामक इस तूफान का अधिकतम फैलाव लगभग 1000 किलोमीटर है, जो लगभग फ्रांस की चौड़ाई के बराबर माना जा रहा है। ये तूफान शनिवार शाम सबसे पहले तटीय शहर ताइजू से टकराया और इसके बाद

0: आधी रात के आसपास सवेंजाओ में दूसरी बार जमीन से टकराया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: 4:11 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गज़लों के साथ और इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। मैं कहती हूं आपको नमस्ते, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कहते हैं मोहब्बत कभी मुस्कुराती है, कभी आंख नम कर जाती है और गज़लें इन्हीं एहसासों को अल्फाज देते हैं। तो आइए प्यार, परवा और यादों से सजी हुई इस महफिल की शुरुआत करते हैं। सुनते रहिए फिल्मी गज़लें, मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:19 हो चुके हैं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चंदन दास जी की आवाज में जब मेरी हकीकत जा जाकर, बहुत ही सुंदर गजल। चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे शायर की जिनका नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी उर्दू शायरी के मशहूर शायर थे। उनकी शायरी में मोहब्बत की सादगी और दिल की सच्चाई साफ दिखाई देती है। लिखते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। क्या खूबसूरत लिखा है दोस्तों। कुछ रिश्ते भले ही पीछे छूट जाएं, लेकिन उनकी उम्र जो होती है बहुत ही लंबी होती है। कहते हैं उनकी यादें बहुत लंबी होती है। शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान होती है कि उनकी यादें बहुत लंबी और प्यारी होती हैं। इंसान चला जाता है इस संसार से, पर यादें कभी नहीं जाती।
0: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम पसंद आता है। तो आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। हम बात करने जा रहे हैं अगली शायरी की और अगले शायर की। अगले शायर हैं दाग दहलवी साहब, लिखते हैं और वो एक बहुत मशहूर गायक भी रहे और एक मशहूर शायर भी रहे। तो उनकी जो मोहब्बत की बातें, उनकी नज़ाकत की बातें, उनकी दिल की बातें, जो उनके जज्बात थे, वो बहुत ही खूबसूरती से छलकते थे। लिखते हैं, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतज़ार किया, हंसा हंसा के शबे वसल अश्क बार किया, हंसा हंसा के शबे वसल अश्क बार किया, तसल्ली ये दिले बेताब बार बार किया। क्या खूब लिखा उन्होंने, वाह वाह। ऐसी शायरी जिसमें मोहब्बत में इंतज़ार कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो उम्मीद आखिरी सांस तक साथ निभाती है। शायद यही इश्क की सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल बात है।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: Testing 1 2.
2: Yeah. कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज।

0: आपका स्टाइल
1: और आपका चांस.
0: डोंट मिस इट.
2: RM3 Radio.

0: गजल।
1: 4:48 हुए हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ और यहाँ पर सिर्फ हम चलाते हैं खूबसूरत गजलें, चाहे वो बॉलीवुड से किसी मूवी से ली गई हो या किसी और एल्बम से ली गई हो, पर हम चलाते हैं आपकी पसंद की हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसे शायर की जिनका नाम ही नहीं हमें पता, पर कहते हैं उन्होंने लिखा बहुत सुंदर। लिखते हैं, दिल टूटा तो आवाज़ नहीं आई, दिल टूटा तो आवाज़ नहीं आई, बस मुस्कान थोड़ी कम हो गई। लोग पूछते रहे सब ठीक है ना, सब लोग पूछते रहे सब ठीक है ना, और खामोशी मेरी हम सफ़र हो गई। दिल टूटने का शोर दुनिया नहीं सुनती दोस्तों, बस एक मुस्कुराहट थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, फिर इंसान बातें कम करता है और खामोशी उससे ज़्यादा बातें करने लगती है। और तभी कहते हैं जब इंसान के घर में बहुत सा सुकून मिल जाता है अलग बात है, बट जहाँ पर कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता वो बहुत मुश्किल दौर होता है उस इंसान के लिए जिनका दिल टूटा हुआ होता है। तो इसलिए दिल तोड़ना नहीं है, बस मुस्कुराते रहना है। ये आप लिए आपकी गज़ल है जसवंत सिंह के नाम, बहुत ही प्यारी सी गज़ल है, आपको अच्छी लगेगी, आप सुनिए इसको।
0: RM3 Radio.

0: गजल।
1: 4:54 हुए हैं दोस्तों। गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके एहसास देर तक साथ रहते हैं। इसी एहसास के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ पूनम। नमस्ते आदाब, अपना ख्याल रखिएगा। अब वक्त है शीतल जी के कार्यक्रम का। ये लास्ट गजल आप सबके नाम छोड़े जाती हूँ। सुनते रहिए RM3, अपना ख्याल रखिएगा।
2: RM3 रेडियो।

0: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
1: Raj Kapoor, the ultimate, the greatest showman of Indian cinema, who shaped the destiny of Indian cinema. Raj Kapoor wasn't just a national icon, balki Raj Kapoor sahab rahe a true global film ambassador. Har border ko paar karte huye, chahe wo political ho, social ho, Bharat se hote huye puri dunya mein Hindi cinema ki pehchan bana di. Aur isliye Hindi cinema Raj Kapoor ke हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आज उन फिल्मों को हम याद करेंगे जो कि उन्होंने या डायरेक्ट की हो या उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया हो।

राज कपूर अपने आप में एक पूरे फिल्म मेकर रहे। अनेकों फिल्मों में बतौर एक्टर काम करते हुए एक ऐसा समय भी आया कि वे ज्यादातर डायरेक्शन की ओर अपनी रुचि बढ़ाने लगे। हालांकि सन 1960 में 1960 में फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर राज कपूर ने काम किया, लेकिन साथ में लीड रोल भी निभाया और उनके बगल में बतौर लीड एक्टर रहे प्राण और साथ में पद्मिनी भी मौजूद रही।

जिस देश में गंगा बहती है एक हिट साबित हुई और इस फिल्म को कई अवार्ड से भी नवाजा गया। कई नॉमिनेशन के बीच बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और नेशनल फिल्म अवार्ड ने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है को दिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। राज कपूर में खास बात ये रही कि उनके फिल्मों में, अनेकों फिल्मों में उन्होंने पैट्रियटिज्म को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया। जिस देश में गंगा बहती है में भी एक बार फिर ये दिखा दिया अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा लगन है। आ अब लौट चले। लता जी और मुकेश की जुबानी सुनते हैं।

राज कपूर के अनगिनत फिल्मों में छलिया, आवारा, श्री चार सौ बीस, लेकिन एक ऐसी फिल्म आई थी, अ कल्ट क्लासिक मूवी, मेरा नाम जोकर, द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ राज कपूर साहब।

साहब, इस फिल्म को बनाने में राज कपूर को लगे 6 साल। फिल्म मेरा नाम जोकर दर्शाता है कि राज कपूर एक बहुत ही फॉरसाइटेड, एक विजनरी फिल्म मेकर रहे। उस दौर में 70 के दौर में उन्होंने विदेशी कलाकारों को अपने फिल्म में शामिल किया, विदेशी सर्कस को अपने फिल्म में शामिल किया, इंटरनेशनल कलाकारों को भी मेरा नाम जोकर में शामिल किया। प्रोड्यूस्ड एंड एडिटेड बाय राज कपूर साहब। हालांकि शुरुआती तौर में ये फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आगे चलकर इस फिल्म के मान्यता को लोग समझे, तभी जाकर ये फिल्म बन गया अ कल्ट क्लासिक मूवी। राज कपूर ने इस फिल्म में जिंदगी के हर एक पड़ाव को बड़ी खासियत से पेश किया और कितने आसानी से जिंदगी को सर्कस की तरह पेश किया। ए भाई जरा देख के चलो, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इस गाने को पेश किया मन्ना डे साहब ने।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

राज कपूर और सिनेमा, ये एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन जोड़ी रही। मानो कि राज कपूर इस दुनिया में बस फिल्में बनाने के लिए आए हो और उन्होंने इस कार्य को बड़ी अच्छे तरह से निभाया। कई फिल्मों के बीच एक बेहद ही हसीन रोमांटिक ड्रामा मूवी संगम आई थी 1964 में, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूस बाय राज कपूर साहब एंड आके फिल्म। संगम एक लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म रही और उन रेयर फिल्मों में एक थी जिसकी शूटिंग लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड में हुई थी। 1964 के सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म रही, जहां कहानी के साथ साथ संगीत ने भी हिंदी सिनेमा में इतिहास बना दिया। इस फिल्म के गीत और संगीत बेहद ही प्रभावशाली रहे। इस फिल्म के जरिए या फिर इस फिल्म के साथ साथ हर एक कलाकार को एक अलग पहचान और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। राज कपूर के ऑपोजिट बेहद ही हसीन खूबसूरत विजयंती माला मौजूद रही। राजेंद्र कुमार भी इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर नजर आए। फिल्म फेयर ने फिल्म संगम को अनेकों नॉमिनेशन के बीच दिया। द बेस्ट डायरेक्टर का खिताब, विजयंती माला को मिला बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का खिताब।

0: राज कपूर के प्रोडक्शन तले रणधीर कपूर उनका बेटा फिल्म आई थी 1971 में कल आज और कल फीचरिंग प्री जनरेशन ऑफ द ग्रेट लेगेसी ऑफ कपूर खानदान पृथ्वीराज कपूर राज कपूर रणधीर कपूर बतौर लीड एक्टर नजर आए राज कपूर ने इस फिल्म के जरिए कपूर खानदान के तीनों जनरेशन को बड़ी खूबसूरती से पेश किया लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को इन तीनों जनरेशन का भी इस फिल्म में उन्होंने दर्शाया किस तरह समय के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं किस तरह समय के साथ साथ जनरेशन के मांग बदल जाते हैं।
1: टिक टिक टिक टिक, टिक।

आए और उन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी साथ पिक्चराइज हुआ। आप यहाँ आए किस लिए? किशोर कुमार और आशा भोसले ने इन दो कलाकारों के लिए प्लेबैक दिया।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना, ना।
0: सुनो तो
1: ना, ना।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी बॉबी 1973 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म के जरिए राज कपूर ने नए जनरेशन के अलग अलग मांगों को पेश किया, उनके नए अंदाज को पेश किया और फिल्म बॉबी इतनी खास रही जो कि उस दौर का बन गया अ ट्रेंडसेटर।

0: इस फिल्म के पहनावे को लेकर, इस फिल्म के गीत और संगीत को लेकर लोग बेहद ही प्रभावित हुए। साथ में ये एक डेब्यू फिल्म रही डिंपल कबाडिया के लिए और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट उनके एक्टर रहे ऋषि कपूर साहब। इस फिल्म में प्रेम कहानी को, टीनेज रोमांस को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: तुम।
1: साथ में रिच वर्सेस पू को भी इस फिल्म में अच्छी तरह से दर्शाया गया। न मांगू सोना चांदी, अ कंपिलेशन ऑफ म्यूजिकल ड्रामा। इस फिल्म के अनेकों गाने बेहद ही मशहूर हुए। संगीतकार रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म बॉबी एक रोमांटिक मूवी रही, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब। आज भी फिल्म बॉबी की कहानी, आज भी फिल्म बॉबी के गाने प्यार करने वालों को बहुत प्रभावित करता है। जिंदगी के हर एक खूबसूरत पड़ाव को इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती और खासियत से राज कपूर ने पेश किया।

राज कपूर में खास बात ये रही, हर एक फिल्म में कुछ न कुछ नया ले ही आते थे। 1978 में प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब, सत्यम शिवम सुंदरम, कितने खासियत से, कितनी खूबसूरती से स्पिरिचुअल प्यार को उन्होंने इस फिल्म में दर्शाया। शशि कपूर और जीना तमान को उन्होंने इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर पेश किया। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गीत और संगीत का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा।

0: पांच दिन की 3:15 पर मॉरिशस पहुंची। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये प्रथम सीधी उड़ान मॉरिशस और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहे, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज रोड्रिग संस्कृति दिवस के 10वें संस्करण के समारोह के मौके पर कही। इस समारोह के अंतर्गत खान पान, हस्तशिल्प, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं के जरिए रोड्रिग्स की संस्कृति प्रस्तुत की गई। मॉरिशन महिला ठेकेदारों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदो में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। समुद्री शैवाल यानी सीवी डाइट सेहत और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संसाधन साबित हो सकता है। इस बुलेटिन में मुलाकात यूनिवर्सिटी मॉरिशस में एक युवा शोधकर्ता के साथ। वे पिछले साल से मॉरिशन लगूनों में पाए जाने वाले खाने योग्य समुद्री शैवाल पर काम कर रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ा। ईरान ने तुरंत होमूज जलमार्ग बंद किए जाने की घोषणा के बाद वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर आज गोलीबारी की। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। पहली बार के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान आज मॉरिशस पहुंची। ये विमान अदिस अबेबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5.5 घंटे की सीधी उड़ान पर यहां आया और दिन के 3:15 पर प्लेजोंस हवाई अड्डे पर उतरा। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये प्रथम सीधी उड़ान मॉरिशस और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहे, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज रोड्रिग संस्कृति दिवस के 10वें संस्करण के समारोह के मौके पर कही, जहां वे मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। इस गतिविधि का आयोजन मुवमों सोलिदारिते रोड्रिग द्वारा लातू के निक्के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में किया गया। उपस्थित लोगों को खान पान, हस्तशिल्प, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं के जरिए रोड्रिग्स की संस्कृति को बेहतर जानने का मौका मिला। लातू के निक में आज लगे समारोह के अंतर्गत प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल पोर्ट लुइस में श्रमिक संघों द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मार्च पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है और वे इसका सम्मान करते हैं। सेंट्रल एलएसटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती हैं। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। मॉरिशन कारोबारों के लिए अफ्रीका संभावनाओं से भरी एक मंडी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बदौलत व्यापार की रुकावटें कम हो रही हैं, जिससे निर्यात करने वालों के लिए नए मौके खुल रहे हैं। मॉरिशन महिला ठेकेदारों को इस समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदो में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। इस पर अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: रिविया जुगापो स्थित फिटियो गार्मेंट के लॉन्चिंग के साथ जेनी पिज्याल को उच्च किस्म के मॉरिशन टेक्सटाइल के भविष्य को लेकर भारी उम्मीदें हैं। उनके सामान पहले से ही प्रसिद्ध ग्राहकों की ओर निर्यात

0: किए जाते हैं। आज अफ्रीका इस कारखाने के लिए एक अहम मंडी बनी हुई है, जहां पर 100 से अधिक लोग काम करते हैं और प्रति महीने करीब 1,00,000 कपड़ों का उत्पादन होता है। फिचू गवर्नमेंट की संस्थापिका एवं निदेशिका जेनी पिज्याल ने कहा, निर्यात पर बिजनेस शुरू किया, पहले तो रेनियन की ओर निर्यात शुरू हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका। हम अफ्रीकी मंडी में बने रहना चाहते हैं क्योंकि अफ्रीका पड़ोसी देश है, इस पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि ज़्यादा ऑर्डर मिल सके। AFCTA के जरिए सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संभावना है, जिन्हें इससे लाभ उठाना चाहिए। मौके से फायदा उठाते हुए अफ्रीका में रहकर अफ्रीका में निर्यात करते रहें। मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया AFCTA का एक सदस्य है और इसके आगमन से महिला ठेकेदारों के लिए नई संभावनाएं पेश हो रही है। इससे व्यापार में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी में कमी, 1.4 बिलियन से अधिक के उपभोक्ताओं के लिए मंडी में प्रवेश पाना और साथ में अफ्रीकी निर्यात को प्रोत्साहन मिलना, जैसे कि हाई वैल्यू एडेड के अंतर्गत उत्पन्न पदार्थ आदि। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से विदेश मंत्रालय और UNDP के सहयोग से पिछले 8 और 9 जुलाई के बीच कोटा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मकसद महिलाओं द्वारा संचालित मॉरिशन कंपनियों को तैयार करना ताकि उन्हें बेहतर तरीके से इलाकाई वैल्यू चेन्स में सम्मिलित किया जा सके और AFCFTA की ओर से प्रदान लाभों से फायदा उठा सके। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, एकमात्र समझौता है जिसमें महिला ठेकेदारों के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है, इसमें कई बातें हैं जो महिलाओं के लिए लागू हैं। ज़्यादा संभावनाएँ हैं, जैसे कि जब कोई महिला लोन लेने जा रही हो तो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कठिन है। ये सब है इसमें जिससे महिलाओं को मदद मिल सकती है, इस समझौते से फ़ायदा उठा सकती है और युवकों के लिए भी। मॉरिशस में UNDP की प्रतिनिधि अलका भाटिया ने कहा, प्रशिक्षण के माध्यम से, फाइनेंस उपलब्ध कराने के माध्यम से और मंडियां उपलब्ध कराने के जरिए महिला ठेकेदारी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। EDB शी ट्रेड्स मॉरिशस हब की निदेशिका निर्मला जीता ने कहा, ज्यादा जानकारियां दे रही हैं ताकि महिला ठेकेदार व्यवसाय नियमों को समझ सके, जरूरतों के बारे में जान सके और अफ्रीका महाद्वीप की संभावनाओं के बारे में जान सके, क्योंकि अभी बहुत महिलाएं नहीं हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप की ओर निर्यात कर रही है। EDB महिला ठेकेदारों को अफ्रीकी मंडियों में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयासों में उनकी मदद करेगा। बजट 2026-2027 में घोषित पहल के अंतर्गत भी ऐसा किया जा रहा है, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि देश की आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की दिशा में कोशिशें बढ़ाई जाएं।
1: चलिए आज आपको एक ऐसे संगठन से वाकिफ कराते हैं जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत हैं। साकिम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस नामक का ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। संतना पुंसनो की रिपोर्ट पर गीता सोनान का विवरण।
2: इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे अक्सर बीमारी के खिलाफ लंबा संघर्ष छिपा होता है। लगभग 60 वर्षों से साकिम जटिल बीमारियों से पीड़ित मॉरिशस के बच्चों की मदद कर रहा है और उन्हें ऐसे विशेष उपचारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है जो शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाते। जन्म से ही यहाँ मेरी देखभाल होती है। अब 25 साल का हूँ, कई ऑपरेशंस किए हैं, अब सीधा बैठ सकता हूँ। अगर वे नहीं होते तो मैं व्हीलचेयर पर रहता। अगर साकिम की मदद से मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो मैं पलंग पर ही रहता, आम बच्चों की तरह नहीं चल पाता। परिवारों के लिए ये सहायता केवल इलाज तक सीमित नहीं है, ये सहयोग अपने बच्चों को फिर से सामान्य जीवन जीते देखने की उम्मीद है। साकिम की बदौलत मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, उसे एक नया जीवन मिला। ये मिशन उन विशेषज्ञों की बदौलत संभव हो पाया है जो अपना समय और अनुभव समर्पित करते हैं। 3 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस आए ये भारतीय चिकित्सक साकिम के साथ लंबे समय से चल रही साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पुराने लाभार्थियों की चिकित्सा निगरानी की जा सके और

0: नए बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके। बेंगलोर के स्पर्श अस्पताल के डॉक्टर नवीन तहसीलदार कहते हैं, 2014 से मैं साकिन से जुड़ा हुआ हूं। डॉक्टर अमृत राजकुमार की बदौलत ये शुरुआत हुई। हर बार यहां आता हूं तो इन बच्चों को देखता हूं। कुछ की शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहने के बावजूद साकिम लगातार लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। साकिम की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीना दुहिता रामदेनी कहती हैं, पहली बार आने पर बच्चे का उम्र 18 साल से कम की होनी चाहिए। हम उन अभिभावकों से मांग करते हैं जिनके बच्चों को कोई समस्या है, वे हमारे पास आएं। माता पिता दोनों के वेतन मिलाकर 1,00,000 रुपए से कम होने चाहिए। हम उनकी सामाजिक रिपोर्ट बनाते हैं जो सरकार के एक प्रोबेशन अफसर द्वारा तैयार की जाती है। 1968 से अब तक साकिम ने 764 बच्चों की सहायता की है और मॉरिशस तथा विदेशों में 967 विशेष चिकित्सा प्रक्रियाओं को संभव बनाने में योगदान दिया है। इन आंकड़ों के पीछे अनेक जीवन यात्राएं, राहत महसूस करने वाले परिवार और वे बच्चे हैं जिन्होंने फिर से उम्मीद पाई है।
1: ठेकेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में मराठी कंसल्टेटिव काउंसिल एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मराठी चेंबर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की लॉन्चिंग के साथ मॉरिशस में मराठी समुदाय के ठेकेदारों और महाराष्ट्र के व्यवसायियों के बीच सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। अश्मिता बंटू की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: कारोबार का एक वास्तविक नेटवर्क कायम करना और मराठी समुदाय में ठेकेदारी की संस्कृति प्रोत्साहित करना मराठी चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के यही उद्देश्य हैं। 100 से अधिक ठेकेदारों ने मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की सीट पर लगे फोरम में भाग लिया। कंसल्टेटिव समिति के सदस्य ज्ञानदीप मुचा ने कहा, कई व्यावसायिक एवं पेशेवर हैं जो कार्यरत हैं, अतः इस तरह का संगठन उन्हें संगठित करने का एक मंच है ताकि कार्यशालाएं आयोजित की जा सके, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभावनाएं प्राप्त हो सके, अलग अलग अनुभव प्राप्त हो सकेंगे, वे अपने खुद के बिजनेस को भी विकसित कर सके। अलग अलग क्षेत्रों के कंपनी प्रमुखों ने मौके से फायदा उठाते हुए अपना अनुभव बांटा और साथ में सहयोग की नई संभावनाएं विकसित करने की विशेषज्ञता भी मुख्य रूप से व्यवसाय निर्यात और छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगों को लेकर। अनंता वेलनेस के संचालक विमला तानू ने कहा, महिलाओं को बिजनेस में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, काफी सहायता मिल रही है, कार्यशालाएं हो रही हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है, भारतीयों के साथ नेटवर्क भी प्राप्त होता है। विस्ताकॉम के सीईओ संजीव मल्लू ने कहा, आर्थिक स्तर पर ये बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रों के साथ संपर्क में रहें। यहाँ मॉरिशस में एक छोटी मंडी है, ये जरूरी है कि भारत में राष्ट्रों के साथ संपर्क कायम करें, जो कुछ भी सीख रहे हैं अफ्रीका की ओर इसका इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में सदस्य कंपनियों की गतिविधियों और प्रोफाइल्स को संगठित करने वाला एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जाएगा। कई पहल का ऐलान किया गया है जिनमें एक मराठी यूथ फेडरेशन कायम करना शामिल, जिसका मकसद है समुदाय में ठेकेदारी को बरकरार रखने की बात को बढ़ावा देना और नौजवानों को भी प्रोत्साहित करना।
1: निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को इबेन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। दैविक राजकुमार की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
0: आंखों की समस्याओं रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स को मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ ठीक करने वाली अत्याधुनिक तकनीक, ये लेजर आधारित उपकरण उपचार की अवधि को कम करने में मदद करता है। ये प्रणाली इबेन स्थित आंखों के विशेष निजी चिकित्सा संस्थान स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। अस्पताल के अध्यक्ष और स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूरज मुंजल कहते हैं,
3: refractive irises are broadly of three types. One is a myopia, one is hypermetropia, and the third one is astigmatism.
0: Refractive disorders तीन वर्गों में विभाजित हैं। ये उपकरण इन समस्याओं को दूर कर सकता है।
3: And if there is a combination of these refractive irises, and the results are very, very good.
0: अब तक 10 मरीज इस तकनीक का लाभ उठा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में इस संस्थान ने

0: लगभग 1000 ऑपरेशंस किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र का योगदान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं,
1: वर्तमान
0: आई हॉस्पिटल में 2400 मरीज कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी डॉक्टर ला रहे हैं, एक महीने में सभी ऑपरेशन पूरा कर देना चाहते हैं। अस्पताल में इन्हें पूरा नहीं कर सकते। हम मॉरिशस में प्राइवेट अस्पतालों से कोटेशन मांगते हैं। आँखों की स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए इस संस्थान को कोर्निया ट्रांसप्लांट करने की भी अनुमति प्राप्त हो गई है।
2: राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक आधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटोरी स्थापित करेगी। ये पहल समुद्री संसाधनों की मैपिंग करने वाली परियोजना का हिस्सा है। अब तक मॉरिशस समुद्री क्षेत्र में लगभग 200 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। मॉरिशनों के दिमाग में खाने की चीज़ों के तौर पर शायद समुद्री शैवाल यानी सीवीड का ख्याल सबसे पहले न आए, फिर भी ये हमारे डाइट, सेहत और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संसाधन साबित हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में एक युवा शोधकर्ता दिष्टि देवीदास पिछले साल से मॉरिशन लगूनों में पाए जाने वाले खाने योग्य समुद्री शैवाल पर काम कर रही है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
3: पिछले साल से मॉरिशस विश्वविद्यालय में अनुसंधान करने वाले दिष्टि देवीदास मॉरिशन समुद्रों में अभी तक अज्ञात समृद्धियों के बारे में दिलचस्पी दिखा रही है। अपने खोज कार्यों के अंतर्गत उन्हें खाने योग्य 10 से अधिक प्रकार के एल्गी का पता चला। इन्हें मुख्य रूप से देश के दक्षिण में पोर्टोफोय में बरामद किया गया। विश्लेषणों से उत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए हैं। ये शैवाल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर है। इसके अलावा इनमें हैवी मेटल्स की कम ही मात्रा है। पूर्ण रूप से सुरक्षा पूर्वक इनके सेवन के लिए अहम तत्व।
4: Maurice n'est une pesquise 400 variétés qui n'est fini découvert. Mais pour l'instant, on travaille avec une dizaine de seaweed qui me trouvait des safe to consume et aussi c'est bien riche en bonnes vitamines et bonnes antioxydants. Et ça, l'étude qui me fait là, il y a un peer reviewed journal et que c'est une preuve qui bonnes seaweed et une bonne antioxydant et aussi bonnes métaux lourds de bonnes seaweed et qui est bien bas. En plus de ça, on analyse bonnes carbohydrates, bonnes protéines et bonnes iron qui nous est là de seaweed et une bonne certaine seaweed sur du bonnes algues rouges c'est bien riche en protéines.
3: इनके पोषण गुणों के अलावा ये शैवाल मॉरिशस के लिए नई संभावनाएं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया,
4: nous pouvons créer un food product et après ça nous capable commercialiser produit là capable exporter man seaweed là nous capable créer un food product avec banana avec nous exporter et aussi pour aider dans l'aspect food security dans Maurice et aussi pour nous l'économie.
3: इन स्थानीय प्रजातियों और इनकी क्षमता के बारे में अधिक बेहतर रूप से समझने के लिए उनके कार्य जारी है। मकसद है देश के लिए इस वास्तविक संभावना के बारे में जाना, इस प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तित करना और मूल्य बढ़ाना।
2: तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रिन्यू किया गया। और उधर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने तुरंत होर्मुज जलमार्ग बंद किए जाने की घोषणा की है। वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर आज ईरान की तरफ से गोलीबारी की गई। इसके जवाब में अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। अदिति अवतार का विवरण।
0: रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट अगली सूचना तक और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई समाप्त होने तक बंद रहेगा। जिस जहाज ने इस इलाके से गुजरने की कोशिश की और जो ईरानी हमले का निशाना बना, उसे उसके चालक दल ने आग की लपटों में घेरा छोड़ दिया। नई दिल्ली के अनुसार हमले का शिकार बने इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इस व्यापारी जहाज पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान में

0: लगभग 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कतर की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक दर ने आज अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराकची के साथ टेलीफोन पर बात के दौरान तनाव कम करने की अपील की और सभी पक्षों से संयम बरतने की मांग की।
1: बात करें अब फीफा विश्व कप के बारे में। कल रात मायमी के हार्ड रॉक स्टेडियम में इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 के स्कोर से हराकर 2026 विश्व कप की सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब थ्री लायंस का मुकाबला सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना के साथ होगा, जिसने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। ज्यादा जानकारी अरविंद विशेषर दे रहे हैं।
2: मुश्किल ही सही, पर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया। नॉर्वे की टीम के सामने इंग्लैंड का काम आसान नहीं था। अंत तक लड़ते रहे द वाइकिंग्स। शुरुआत नॉर्वे की बेहतर रही। 36वें मिनट पर स्कैंडिनेवियन टीम के लिए गोल स्कोर करता है शेल डेरूप। तुरंत बाद द थ्री लायंस के लिए जूड बेलिंगम मैच बराबर पर लाता है। दूसरे भाग में इंग्लैंड को कई अच्छे मौके मिले, पर निर्धारित 90 मिनट में गोल नहीं बने। एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड अपना दबदबा बरकरार रखता है और परिणाम उसी के हक में रोजर्स के जोरदार शॉट पर नॉर्वे का गोलकीपर चकमा खा जाता है। गेंद सीधे बेलिंगम के यहाँ, कोई गलती नहीं, बेलिंगम का डबल। इंग्लैंड की जीत 2-1 से। अब 15 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के सामने होगा, मेसी का अर्जेंटीना। ये मैच रात्रि के 11 बजे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर सीधा प्रसारित किया जाएगा।
1: बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर। आम हालत, उत्तर पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को कल सुबह से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज शाम और रात के दौरान ऊंचे इलाकों में विशेषकर बारिश होगी। कल सुबह पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर विशेषकर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में विशेषकर पश्चिम और दक्षिण वाली लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। कल दोपहर बाद पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों की स्थिति में सुधार आएगी तथा तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:45 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:45 पर।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रही, कुछ देर में हम सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बॉम्बे स्ट्रीट पेटी राफे में, बॉम्बे स्ट्रीट पेटी राफे में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी रघुबा पैदाशना मित्तल और जिन सुनीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पति सचिदानंद रघुबा के घर पेटी राफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। तेलफेयर एवेन्यू कैट्रबोन में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती बेनी प्रसाद पैदाशम बीरबल और जिन्हें माजिन

नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनकी बेटे अनी बेनी पौसाद के घर काठरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट द 9:45 AM मामजेल जान रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती मितन पैदाशाम बहादुर अजनय तारा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 उनके बेटे श्याम मितन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM ला रू मागू पोर्ट लुइस में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की फातमा जीवा पैदाश्राम सईद और जिन्हें फातमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले वलसी पुनी पोर्ट लुइस की रहने वाली थी इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज रात 8:00 इनके मकान पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8 PM इंपास फ्रेडरिक बोनफे क्यूपिप में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीनाक्षी बिसेसा पैदाशाम मुत्ती और जिन्हें अकाफी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1:00 उनके घर बोनफे क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमोरो 1 PM एमिल पीटो क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की बीबी साबेरून रामजोनी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 4:45 पर उनके घर से उठाकर दफनाने के लिए बिगा का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल टुडे एट 4:45 PM रामपेसाद स्ट्रीट एंग्रीमोसियाल ओकुले में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री योगेश जवाला पेसन जिन्हें योगेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनकी माँ मीता मायापत के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फीगनो वाकुआ शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 9:45 AM एवेन्यू डेलिस कान्यूट अल्बियों में एवेन्यू डेलिस कानूत अल्बियों में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री नवीन दत्त लुफो जिन्हें मेरीलाल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2:00 उनके घर अल्बियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM बंगाली रोड बुसोंज में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री शिवराज भो जिन्हें शिवराज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1:00 उनकी माँ लक्ष्मी भो के घर भूसौर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM VRS2 Ruisseau de Delis, Villenoy में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री अमरीका सिंह ओबिलक सिंह जिन्हें बाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके दामाद कालीदीन राजीव के घर विलो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमोरो 10 AM सीधे थ्वा बुच्चिक यूनियन वेल में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश मर्दे जो वियो रेस्टोरों के मालिक थे और जिन्हें पापों के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1:00 उनके घर थ्वा बुच्चिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

एसीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। मोसेलमो न्यूटाउन एवेन्यू अली एवेन्यू आर्मस्ट्रॉन्ग और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। रोशब्रुन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। मोसेलमो न्यूटाउन एवेन्यू अली एवेन्यू आर्मस्ट्रॉन्ग और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 13 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 9:30 से लेकर 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। याद रहे 9:30 से लेकर 4 बजे तक मरम्मत कार्य समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति सेबी की ओर से।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: छः बजकर 10:10 हुए हैं श्रोताओं नमस्कार आप सबको कैसे हैं आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ RM Free Radio और आप सुन रहे हैं अभी नई सोच कार्यक्रम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए हर रविवार की तरह और आप ही साथ निभाइएगा ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ भावगीत आप लोगों के लिए हम पेश करेंगे कहते हैं ना जीवन का सफ़र मंजिल से ज़्यादा उन रास्तों का नाम है जहाँ हर कदम हमें कुछ नया सिखा कर मजबूत बना देता है और सफ़र लंबा हो या छोटा अगर हौसला साथ हो तो हर मोड़ एक नई उम्मीद लेकर आता है तो चलिए ऐसे खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम करते हैं और भूलिएगा नहीं जिंदगी एक खेल है हार और जीत इसमें ही शामिल है

जहाँ दोस्तों मंजिल बदल सकती है, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन जो अपने इरादों पर कायम रखता है उसका सफ़र कभी बेकार नहीं जाता। और कहते हैं ना, जीवन का सफ़र हमें ये सिखाता है कि हर गुजरता हुआ पल एक अनमोल उपहार है। वैसे कि अभी आप लोग इस समय इस पल बिता रहे हैं अपनों के साथ, तो बस अच्छी तरह से ये समय बिताएं, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर ये प्यारा गाना आपके

श्रोताओ, जिंदगी एक गीत है जिसमें कभी खुशी के सुर होते हैं तो कभी दर्द की धुन, दोनों मिलकर ही इसे खूबसूरत बनाते हैं। और कल एक नया दिन है, हर सुबह जिंदगी एक नया गीत लिखती है, बस दिल को उसकी धुन सुनना आना चाहिए। वैसे तो 2400 घंटे आप लोगों के लिए रेडियो मनोरंजन आपके साथ है, हम साथ देते हैं, बस ऐसे ही आप हमेशा हमारे साथ गुनगुनाइए। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गीत सौतन फिल्म से लिया गया, ये गाना सुनिए। और इसी गीत के साथ नई सोच प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो जाएगा, और लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि 7 बजे के बाद भूलिएगा नहीं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: तू ही है जीने की वजह, तेरी मुस्कान मेरी सुबह है, तेरा साथ है मेरी शाम है, और तेरे बिना जिंदगी चल तो सकती है मगर जी नहीं सकती। 7:10 हुए हैं, जी हाँ, और आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, कैसे हैं आप? और अगर आप लोग जुड़ गए हैं अभी तो याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं RM Free Radio। जी हाँ, RM Free Radio, रेडियो मनोरंजन, और प्रोग्राम है दिलों की आवाज़। और ये प्रोग्राम आप सुन पाएंगे 9 बजे तक, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, बस इस शाम को और रंगीन हम साथ मिलकर बनाएंगे। नंबर है 4028070। मैसेजेस आप भेज सकते हैं ऑन 5250620। वैसे काफ़ी लोग इस प्रोग्राम पसंद करते हैं, और ऐसे 80s और 90s के गाने हम तो चलाते हैं। और यहाँ पर सलामी का ये खूबसूरत गाना रोहित जी के लिए, जो हमें सुन रहे हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ, आपने सुना ये प्यारी गजल। और कभी कभी गजलें जो होती है ना, बस एकदम सुकून दे जाती है हरिहरन जी की आवाज में। और यहाँ पर आज 12 जुलाई 2026, सब बहुत से लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो जी हाँ, हर एक का नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो भी लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, बस आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं हमेशा हम देते रहेंगे जन्मदिन के अवसर पर। और ख़ास बधाई बहना भाभी मनीषा हरनम को, जी हाँ आज उनका जन्म दिवस है। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनकी माता जी, उनके प्यारे पति रोशन जी, बेटा जयशाल और ऋषाल, भाई जो है नितेश, भाई नितिन, भाभी ब्रिंदा और भाभी करुणा, और साथ में उनकी उनके भतीजे भतीजियां जो हैं बहुत प्यार दे रहे हैं उनको, मनीषा को। तो मनीषा जी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको पूरे एमबीसी टीम की ओर से। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और हम यही आशा करते हैं कि आप जीवन में और तरक्की करें। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, बस आपको भी हम विश करते हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये गाना आपके लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है सुदेवी जी फ्रॉम वाक्वा और गाना खासकर वो मांग रही है कुशल फैमिली और साथ ही साथ में

के लिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जैसे कि हम आप जानते हैं ये कार्यक्रम जो है आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं ऑन लाइव टिकटॉक। और हम आपको ये कहेंगे कि ये जो हमारा जो पेज है रेडियो मनोरंजन और एम फ्री रेडियो, इस पेज को आप फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें और औरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और आपका नाम हम तो लेंगे ही। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं बटरफ्लाई जो है निशा राम चरित है। ललित मोहन भट्ट आपके लिए, नीलिमा हेलो आपको, शैलेंद्र जी प्रणाम, शकीला और गीता रामनारायण है, हर्ष जो है, विमला श्रद्धा लखनोट है, नमस्ते आपको, दिनेश गोपी है और निशा जो है निशा रामचरित गाना मांग रही है अपनी मामा मीरा के लिए, तो चलिए उनके लिए हम गाना चलाएंगे। और साथ में याना जो है वो हमें सुन रहे हैं, समय घर पर है, साथ दे रही है, थैंक यू। और हेमा नेपोल सिंह है, माधवी डूमर है और साथ में आयशा भी है, हेलो आपको, और श्वेता आपके नाम भी ये गाना जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए लव के, हाँ जी फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा, आशा जी और सोनू निगम की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज
1: हम तो जी खो गया रामा रामा लेकिन कहां खो गए ऐसे है जे जब ऐसे रोमांटिक गाने चलते हैं ना तो बस हम खो ही जाते हैं अपनों को सोचकर जो हमसे प्यार करती है हम उनसे प्यार करती है तो इनके बारे में हम सोचते रहते हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम जैसे कि हमने कहा है लाइव टिकटॉक पर भी आप हमें देख सकते हैं और यहाँ पर गाना हम चलाएँगे मंजुलिका के लिए क्या करें आपका जो असली नाम है आपने बताया नहीं मंजुलिका जो है हमें देख रही है और दाहिना लवना जो है गाना मांग रही है मौसी छाया भोईजू फैमिली नहीं मौसी छाया भोईजू जी हाँ और विकास बीगू के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम जो रहते हैं फ्रॉम रहते हैं फूंजी साक और यहाँ पर रवि है गाना मांग रही है अपने अपनी गर्लफ्रेंड आशना के लिए और साथ में है निवेद निवेद भी हमें देख रहे हैं लवना जो है गाना मांग रही है अपनी मामा फकीर आशा फकीर जो रहती है पिछे गाफ़े किशन बंदन सूरज सजादा जी है जो हमें सुन रहे हैं और वो रहते हैं थियोरी गाना खास कर निशाल के लिए और हमारे एमबीसी के पूरे टीम के लिए भी तो चलिए जेनी गाना मांग रही है हस्बैंड डॉमैन बेटा जेविन और ज्ञानी जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम मिडलैंड्स और साथ ही साथ में आशा तुलसी है आलिशा है पार्वती नोयन है नमस्ते आपको और किरण बाबू आतिफ असलम का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं दस कोल आपके लिए जाद के लिए थैंक यू सो मच सोनल हमने आपका मैसेजेस देख लिया है थोड़ी देर में आपका गाना हम चलाएंगे और गुचना गंगा भी सुन

0: RM3 Radio. Radio. दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: क्या से क्या हो गया देखते देखते, लेकिन देखते देखते आज बजकर 50 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर टाइम जो है जल्दी जल्दी भागा जा रहा है और आप जो साथ दे रहे हैं इसके लिए हम कहेंगे बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर स्वेनल है जी, हाँ वो मांग रही है गाना खासकर अंतिश के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और भाई श्रावण, भाभी कीर्ति, अभिनव की या नाव्या और तिलक फैमिली के लिए, और साथ ही साथ में इंदिरा जी हैं, गाना वो मांग रही हैं अपने दोस्त शाम के लिए। चलिए शाम के नाम ये गाना। और सरगम जो है हेलो आपको, और जेराल्डो नामा सेवायन आपके नाम, जी हाँ गाना जाएगा। और ऋषि वंसुदेव है, गाना वो मांग रहे हैं अपनी बेटी आशी और बेटे के नाम। विजय त्रंगा लोबी, चलिए हाय टू यू। रानी जोई सूरी है, हेलो नमस्ते आपको, कैसी हैं आप, आपके लिए गाना हम चलाएंगे ज़रूर। और कहते हैं ना जो लोग अभी विदेश में हैं हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम कभी मिस नहीं कहते करते हैं उनको हम भूलते नहीं हैं। राजेश जुटन है, नमस्ते आपको।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: कहते हैं खुश है वो लोग जो हमेशा दूसरों को खुश रखता है उनके चेहरे पर हंसी लाते हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं सीता जी जी हाँ फ्रॉम कालबास और गाना खास कर वो मांग रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए और साथ ही साथ में दाहिना है गाना वो मांग रही हैं अपने हस्बैंड अजय के लिए और जी हाँ जैसे कि हमने कहा गुचिना जो है आजकल वो ठीक नहीं है तो उनके लिए हम गाना चलाएंगे राम सीतल के लिए आतिश सिचैन आपके नाम भी गाना जाएगा और साथ में रानी जोईसूरी हमने कहा वैद्य ही है गुड इवनिंग आपको और नितिश भी है जो बहुत ही दुविधा में है इस समय तो उनके लिए हम गाना ये अगला गाना चलाएंगे हम दिल दे चुके सनम से लिया गया प्रतिमा दुकित्राम नमस्ते आपको कैसी हैं आप हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक है ज़बरदस्त है बान जो है माधुरी जी है जो हमें सुन रही है देख भी रही है प्रवीण कुमार बंदुआ आपके नाम भी गाना जाएगा नीरज अक्षता नीलाओ नीलोआ हाय हेलो आपको और दिनू मोहिद्दीन के लिए और साथ ही साथ में श्यामा माहिर अली आपके नाम

और साथ में हमारे सभी सुनने वालों के लिए और प्रतिमा जो है गाना वो मांग रही है अपने हस्बैंड कृष्ण के लिए, मामा बसंती फैमिली जो है दुखित राम रामसरन फैमिली के लिए, पूनम जो है स्वीटी आपके नाम भी गाना हम चला रहे हैं, विजया जया लक्ष्मी आपके लिए भी, और दीपक भी जो हमें सुन रहे हैं आपके नाम गाना हम चलाएंगे। और पोमलच्छू के लिए भी ये गाना, चलिए एंजॉय कीजिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: एक हसीन निगाह का दिल पे छाया है, जादू है या सुकून है, बस माया ही है। और यहाँ पर माया मैम साहब का ये खूबसूरत गाना हम चलाने जा रहे हैं गुलशन भोला के लिए, और जी नहीं ज्ञान बिहारी के लिए, और वो हमें इस समय सुन रहे हैं। और साथ ही साथ में गुलशन भोला जी, हाँ गुलशन जो है गाना वो मांग रहे हैं अपनी मामा प्रभा, बहन दीक्षिता और आयशा और पूरे भोला फैमिली के लिए। तो चलिए हम गाना चलाएंगे फ्रॉम माया मैम साहब। और साथ में रानी जॉय सूरी है जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम इटली। वैसे हमेशा हम कहते हैं लोग यहाँ पर नहीं है, मॉरिशस में नहीं है, लेकिन जो हमें बाहर

से सुन रहे हैं विदेश से, तो आप लोगों के लिए भी हम एंटरटेनमेंट करते हैं, आपको भूलते नहीं हैं। जी हाँ बिल्कुल, और खास गाना हम चलाने जा रहे हैं वैदेह के लिए। परवीन जुमन आपके नाम गाना हम चलाने जा रहे हैं, और साथ में कमलेश टू अंजलि। जी हाँ कमलेश जो है गाना मांग रहे हैं अंजलि के लिए, नास है हेलो आपको।

0: RM3 Radio. Radio. Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:17 हुए हैं और यहाँ पर ज्ञान बिहारी जी जो हमें सुन रहे हैं, कना खास कर वो मांग रहे हैं बीवी सबीता, भाभी गीता, संजीव, सुनील रानी और पूरे आरएम फ्री टीम के लिए, और साथ में प्रयाग श्वेता, उनके लिए भी गाना हम चलाएंगे। देव कुमार कालीचौ, आपके नाम इस्ता शाह, हेलो आपको, और लूना नन को, आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे ज़रूर। और अंजलि चेट्याओ, राजीव जितन, आपके नाम और आपके परिवार के नाम गाना जाएगा। शैलेश द्वारिका, गाना खास कर वो मांग रहे हैं हेमा के लिए, फ्रॉम शैलेश। विमला देवी हैं, हिमेश रेशमिया है, आपके नाम भी हम गाना चलाएंगे। और साथ में तेज जो है, गाना वो मांग रहे हैं अपनी दादी के लिए, क्या बात है, दादी दिलवंती के लिए। शोभा जी, आपके लिए हम गाना चलाएंगे, जी हाँ, गिरवार वीरन कुमारी हैं। और दीप मेहरा है, गाना वो मांग रहे हैं खास कर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए।

0: दिलों की आवाज,
1: तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी हमेशा के लिए। बस ऐसा कर कर के, कह कह के बस प्यार और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमें सुन रहे हैं नितिश फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया और खास गाना वो मांग रहे हैं अपनी बीवी मानवी के लिए। अजमेर खान के लिए भी आपके नाम गाना हम चलाएंगे, छोटे भाई पर हम आपके लिए भी। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमें सुन रहे हैं वेदा, आपको हेलो अग्रवाल मुकेश आपके नाम। और प्रयाग श्वेता है जो है वो गाना मांग रहे हैं प्रयाग फैमिली और कालीचरण फैमिली के लिए। हाँ जी, वेदा जो है गाना वो मांग रहे हैं अपने बेटे जो 4 साल के हैं, बाप क्या बात है, वो भी सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। चले धन्यवाद। पूरन विजय आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। विशाल बिहारी हैं, मनप्रीत सिंह और साथ में

जसविंदर नरूला सुनिधि चौहान और शंकर महादेवन की आवाज़ों में अगला गाना सुनते हैं और भूमरों का ये खूबसूरत गाना रियाना के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स

0: और ये गाना खासकर अमृता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं क्यू पिप से. ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा की तरह, प्यार बरसाते रहिए हम पर.
1: घूंघट में चेहरा आपका.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: वैसे लोग आते हैं जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं और प्यार भी दिखाते हैं, बरसाते हैं, और उनके लिए हम आपको कहेंगे, इसके लिए हम आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को और सुंदर बनाने के लिए हम पूरे कोशिश करेंगे ज़रूर। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, कैसा समय बीता हमें पता भी नहीं। और यहाँ पर हम चलाने जा रहे हैं अगला गाना सावित्री जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम मेबर्ग, और गाना खासकर उनके पति देव के लिए और बेटा आदर्श। और यहाँ पर तनवीर खालिद है जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम यूके, सलाम आपको। और स्वीट डेविल गर्ल, बाप यार क्या बात है, आपके जो नाम होते हैं क्या करे। और आदर्श सुदान है, आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। राशि का है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। संजीव मंडप है आपके नाम। अगला गाना

एक बार फिर से हरिहरन की आवाज में और उन तमाम लोगों के लिए, जी हाँ, उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय तैयारी कर रहे हैं कल काम पर जाने के लिए, आप लोगों के नाम भी

0: RM3 Radio. दिलों की आवाज की आवाज
1: चलिए अगला गाना खुदगर्ज का गाना मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में और साथ ही साथ में साधना सरगम हम सुनेंगे ये गाना और खास कर गाना हम चलाने जा रहे हैं खासकर मायरा के लिए जो हमें सुन रही है और साथ में अनुष भी है और नितिन

जो है अपने अंकल महेंद्र राय कालीचरण के लिए गाना मांग रहे हैं और वीके गोपी है जो रोजबेल रहते हैं उनके लिए गाना वीना जी हेलो टू यू मीरा जो हमें सुन रही हैं उनके लिए भी गाना और साथ में अनिता जी है जो हमें सुन रही हैं इस समय साथ देने के लिए थैंक यू आप रहती है क्यों पीप जी हाँ और चलिए अगला गाना सुनते हैं और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े रहिए एंजॉय कीजिए हर एक धुन और उषा को दीजिए इजाज़त नमस्कार शुभ रात्रि

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:04 हो गल बा सभी प्यारे साथी लोगन के उषा के सप्रेम नमस्ते स्वीकार करा जा और उस समय चला तो हर मन पसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के कई दोस्त लोगन त द बोले लन जा के 9 बजे ला त मान ला ओलो के दिल में भोजपुरी तड़का बज गल यही त प्रोग्राम के शौकीन हो जा त चला 402-85 पर फोन करे जा और अपन मांग करे जा तो चला उषा को तो हर संगे रात के 11 बजे ले और आज का पहल का गीत सुना जा किशोर दा के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के सवा नौ बज गल बा श्रोतारो गांव गांव नगरी नगरी में ई शोर मचल बा भोजपुरी तड़का इज द बेस्ट। हाँ, ये गो ऐसा प्रोग्राम बा जहाँ पर तोहलोग के स्वागत सत्कार होला, तोहलोग के आधार से बात होला, फ़ोन के द्वारा तोहलोग से के फरमाइश पूरा होला और सब प्रकार के भोजपुरी गीतवन चलेला। इतना रोज़ के आदत बन गल बा और इगो रात ई प्रोग्राम नहीं चली तो मन उदास हो जाए। तो चला अगला गीत बरका मामा सुदेश बोजू के गावल गीत और ये गाना संगीता जी खातिर जो हमने के सुना था क्यूपिप से।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:30 बज गल बा श्रोता लोग ऐसा ऐसा भोजपुरी गीत वन सुन के तब माहौल हर यार ही जाला मन खुश हो जाला और तो हर सब चिंता थोड़ी देर के लिए आप लोगन भूल जाए बजा और दुनिया बढ़िया लगेला तो हर दुनिया सवारे के हमने तक खूबे कोशिश करब सा और यही है हमने के कर्तव्य तो चला यहाँ यहाँ पर ही रोहन जी जो रहिला में बग इ बकत हमने के सुनता और गाना मांगा तो बन जा अपन मामा देवरानी खातिर और पापा सुरेश और सभी कुआहू परिवार खातिर सुना नुयन के गावल गीत सुना और जितना के कोई के इ बखत काम करता इकर खातिर ई गाना

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के पौने दस बजकल बा श्रोता लोग भोजपुरी तड़का तोहर खातिर और इतना अच्छा हमने के देश के भोजपुरी जगत में जितना कलाकार बाते सब जे सब चमकता सितारा हो जा मेहनत के बाद ही तह उ लोग के गीतवन रिलीज होएला तो हमने साथ मिल के उ लोग के हौसला बढ़ाई जा भोजपुरी तड़का के माध्यम से गीतवन के मांग कर जा और सुदेवी जी जोन हमने के सुना था वाकवा से गाना मांगा था वंजा आत्माराम भैया त्रियोले के दीदी ललिता और कुशल फैमिली खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के रामरतन परिवार और सब लोग के जितना कोई के हमने के ई बखत सुना था रेडियो मनोरंजन के साथ किसानगी जुड़ल बातें रोशन सरासिन के गावल गीत हंगामा
2: हंगामा हंगामा हंगामा हंगामा हंगामा
1: चला हंगामा करीला सा साथ मिलकर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात के 10:05 श्रोता लोग ठंडा ठंडा हवा चलता सर्दी के मौसम बाते कोनो बाय जेके ठंडा तनी भी पसंद नहीं बाते और कोनो बाते जे गर्मी के सहन करे के कठिन परहेला पर ठंडा हो या गर्मी आप अपन कर्म करा और अपन के दूसर का से कम नहीं समझिया तो चला अगला गीत कृषि के कावल गीत इंद्रानी जी खाते जो रहेला फ्लाक और इबखत हमनी के सुनाता गाना मांगा तवन जा बेटी रूपा और बेटा यादव खातिर और पूरे रामलाल परिवार खातिर

बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:21 हो गल बा संगत्या लोगन थोड़ी देर के लिए सोचा कि भोजपुरी तड़का अब नहीं चली तो हर रात्रि कैसे गुजरी हम तो कबू नहीं सकब सोचे कि ऐसा बात हो भोजपुरी तड़का किया आप लोगन के जिंदगी में बाहर आने के ला और तो हर रात्रि सुहाना हो जला तो चला इस समा के और रंगीन करब जा अगला गीत सुना जा नीरज गुप्त मधु के गावल गीत बेस्ट ऑफ नीरज गुप्त मधु और ये गाना खास कर असलम खातिर जो ही बखत गाड़ी चलावता और घर वापस चलाता और जितना कोई के अभी काम करता गाड़ी चलाता वंजात सावधानी से और माहिन जी खातिर जो हमनी के सुनाता पालमा से तो चला तो हर गाना कुछ ही देर में चलाओ अब जा और खासकर अक्षय और रीना खातिर जो रहिला बासन रोड का ट्रबोन साथ देने खातिर धन्यवाद ये गाना तो हर खातिर

चला गणपत सत्यम ईसान के गावल गीत इगाना प्रदीप जी के मांग पर वो रहते हैं रोजे और ये वक्त हमने के सुनता एकर खातिर और एकर दोस्त सूरन खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:52 होगल बा भाई बहन लोग बहुत धन्यवाद बाकी इतना वक्त होगल फिर भी आप लोगन साथ देवत हवाजा हमेशा सहयोग देते रहिया सबके योगदान से ही एकता से ही मानव के प्रगति होवेला शुभ रात्रि और गाना जुबिदा तुहर खातिर
0: भोजपुरी तड़का।

0: अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। सारे म्यूजिक लवर्स का हम बड़े प्यार से फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल दोस्तों, जहां पे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। वैसे जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ पुराने ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो खुशबू होती है ना, कभी कम नहीं होती है। कुछ लम्हे, कुछ रिश्ते, कुछ मुस्कुराहटें और कुछ गीत जो दिल के किसी कोने में आज भी वैसे ही महफूज हैं जैसे पहली बार महसूस किए थे आपने। तो चलिए जी, अगला नगमा खासकर आपके लिए इस खूबसूरत से सुनहरे पल का शो की शुरुआत करने के लिए।

आज की इस खूबसूरत महफिल में हम फिर से वही यादें ताज़ा करेंगे जब रेडियो घर का सबसे प्यारा साथी हुआ करता था, जब पूरा परिवार साथ बैठकर गीतों का लुफ्त उठाते थे, जब संडे की शाम चाय की प्याली के साथ मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर, मुकेश दा, किशोर कुमार जी और आशा भोंसले की मधुर आवाज़ें हर घर में गूंजती थी। आज हम चाहते हैं कि उसी दौर को आप फिर से दोबारा जी लें हमारे साथ रेडियो मॉरिशस पर।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

पुराने गीत सिर्फ सुर और संगीत नहीं होते हैं, ये हमारे जिंदगी के बहुत ही अहम सुविनियर्स होते हैं। यादों के वो अनमोल तोहफे, वो हमें हर बार एक नई सफर पर ले जाते हैं। कभी बचपन की गलियां और कभी पहली मोहब्बत का एहसास, कभी माँ के आंचल की ममता में, तो कभी दोस्तों के साथ बिताए उन बेपरवाह दिनों में। जी हाँ दोस्तों, गानों के अंदर कुछ ऐसे ताकत होते हैं, कुछ ऐसे पावर होते हैं जो हमें खींच के उसी दौर में वापस लेकर जाते हैं। तो चलिए जी, आराम से बैठ जाइए, अगला गाना आपके नाम।

0: जग जगले दिल जुबा।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: हटा दो।
1: वेल मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से महसूस कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस खूबसूरत सी रात को अपनी सारी फिक्रों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ आप कर दीजिए, अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिता दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और दिल को तैयार कर लीजिए एक हसीन म्यूजिकल सफ़र के लिए, जो स्पेशली हम रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपको लेकर जाते हैं यादों की सफ़र पर।

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आरजे की निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता, महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का वो हसीन दौर, ग्रामोफोन से कैसेट तक और कैसेट से डिल तक, आज फिर से उसी सफर पर चलते हैं। ये निशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत एक याद है, हर याद एक मुस्कान बन जाती है और हर मुस्कान जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। तो चलिए, जो उम्मीद करते हैं कि अगला गाना आपके दिल को भा जाएगा और आपको गुनगुनाने पर मजबूर करेगा। तो चलिए, ये रहा आपके नाम।

फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जाने का वक्त हो गया है मेरे दोस्त, लेकिन वापस जरूर आएंगे, वादा रहा आपसे। शुभ रात्रि, शब खैर, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को बस ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: एबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: एंथनी गोंसाल्विस।
2: गोंसाल्विस?
1: राइट, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

हुए।

NBC Radio, हर पल आपके साथ।